0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य शां

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर 2026। इस समय प्रातः की 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने

0: ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। विषय रहेगा आत्मज्ञान।

0: कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम केवल आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं। बाहर से कुछ भी हमें मिलता है वो केवल एक प्रेरक का कार्य ही करता है। भारत में गुरु का अर्थ अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति होता है। गुरु का महत्व भारत में केवल इसीलिए है क्योंकि गुरु ही किसी व्यक्ति को स्वयं से पहचान करवाता है। सभी गुरुओं की अपनी एक विशेषता हुआ करती है और उनका शिक्षा देने का तरीका भी भिन्न होता है। गुरु की सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए और स्वयं को विनम्र बनाया जाए। हमारे यहाँ शिक्षा विनम्रता का पर्याय है। व्यक्ति जब तक अहंकार में रहता है वो गुरु को समझ नहीं पाता और ना ही वो स्वयं को समझ पाता है। उस समय गुरु और शिष्य के बीच माँ बाप या कोई कानून नहीं होता, क्योंकि गुरु प्रत्येक शिष्य से भिन्न भिन्न व्यवहार करता है ताकि प्रत्येक शिष्य के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को वो खोज सके। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो अपनी पहचान के साथ साथ एक और मन को पहचान पाता है और उसे घड़ पाता है। युद्ध कौशल के साथ अर्जुन, भीम और कर्ण अपनी छवि रखते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले स्वयं को जाना, और शायद इसलिए क्योंकि वो अपने गुरु को पहचान पाए थे। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? स्वयं को खोजने का प्रयास करना, एक ऐसी विधि जहां स्वयं से मिलन होता है। ये एक विधि ही है और इस विधि को पाने के लिए आपको स्वयं तक पहुंचना होगा। आप भजन करें, ध्यान करें, प्रयोग करें, ये सभी शिक्षा है। जब आप स्वयं से परिचित होते हैं तो आप एडिसन बनते हैं, न्यूटन बनते हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास और व्यास बनते हैं, क्योंकि ज्ञान भीतर भी है और बाहर भी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज इसमें आप सुनेंगे कड़ी संख्या 210। एपिसोड
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के

प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर में यानी

6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतनी बात, 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का, 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, 7:30, 10:00 व 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का, 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम, 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत, 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से, 9:10 व 11:00 समय रहेगा सुगम संगीत का, 9:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या व 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेती निबात कार्यक्रम।
1: खेती निबात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने मांझी भाई राम राम। किसान भाइयों, मक्का की फसल अबे पकी ने कटाई ने बल्ले तैयार थई रही थकी है। आवा में मक्का की कटाई ने समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनो ध्यान रखो हुए और कुछ सावधानी है एड में अपने जरूर ध्यान रखो हुए ताकि मक्का ने जो दाना है इनकी गुणवत्ता बनेली रहे और उपज में नुकसान नहीं था। तो किसान भाइयों, मक्का की कटाई अपने तारेस करवी हुए जारे आज भुट्टा है, पोकड़ा है, डूडिया है, ये पूरी तरह की पकी जाए। पकवानी से पहचान है भुट्टा जो दाणा है इन्हें दिखी ने अपने थी सके। जारे मक्की नो जो दाणो है ये सख्त थी जा, इनो रंग चमकीलो हो और दाणा ने से काला रंग से परत दिखावा लगे तारे अपने मक्का ने कटाई बल्ले तैयार मानू जुए। इना हाथी किसान भाइयों, पौधा नी जो पत्ती है जैसे भुट्टा ने छिलक है ई हुकवा लगे तो आ भी मक्का ने पकवानो संकेत से। किसान भाई, मक्का की कटाई बहुत जल्दी करवा थकी इन्हें दाना है इनमें वधारा नमी रही सके जिन्हें खातिर भंडारण ने दौरान इनमें फफूंद लगवाना

0: दाना खराब थवानी जी संभावना है ये काफी बड़ी जा है। और कटाई में वधार देरी करूंगा तो जे बूटे हैं एक खेतर में पड़ी सके, पक्षी या ने जे कीट है इन्हें थी नुकसान थी सके, और आंधी बारिश अगर निकली तो आपकी फसल प्रभावित थी सके। तो किसान भाई हमेशा आनी बातों भी ध्यान रखो है, और कटाई ने बल्ले मौसम हमेशा साफ ने अच्छो धूप वाड़ो दाड़ो आपने बल्ले चुनवो जुए, और संभव हो तो बारिश की संभावना वाला दाड़ा आपने कटाई नहीं करवी जुए। हाथ थे कि कटाई करते समय बुट्ट ने अपने सावधानी थी तोड़वो है ताकि जे दाणा है ये झड़े ने, और बुट्ट ने जमीन ऊपर आपने अनावश्यक रूप थे कि इन्हें घसीटी ने नहीं ले जाव जुए। किसान भाई मक्का की कटाई ने बाद बुट्ट ने खेतर में ढेर लगाड़ी ने अपने लंबा समय तक नहीं सोड़ने राखव जुए, बुट्टे थे कि छिलका हटावी ने इन्हें साफ ने अच्छी हवादार जगह पर आपने हुकाड़वो जुए, ने दाना ने भंडारण में पहले अच्छी तरह से की हुकाबो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दाना में नमी रहेगी तो इनमें फफूंद लगी सके और भंडारण में दौरान भी इनमें कीटों से प्रकोप है ई बढ़ी सके। मक्का ने दाना ने ताप में हुकाड़ते समय इनमें साफ जैसे त्रिपाल हो या पक्की फर्श हो इन पर पतली परत में आपने फैलाई दी हुए, और समय समय पर इन्हें पासो नो पलटो भी करते हुए यानी पलटते रहे हुए। दाने में हेदी मिट्टी पर अपने नहीं उकाड़ हुए क्योंकि इन्हें थी कि इनमें मिट्टी नमी ने जे रोगाणु है ये मिली सके, और रात्र न समय या बारिश की आशंका हो एवं में इन दाने ने अपने ढकी ने सुरक्षित स्थानों पर रखो जुए। किसान भाई भंडारण में पहले जे टूटेल रोगग्रस्त और कीट प्रभावित या फिर खराब जे दाना है आण में अलग करी देव जुए, और भंडारण में बल्ले साफ हुको हवादार गोदाम में जे कोठी है एनो उपयोग अपने करव जुए। अनाज ने जमीन थे की ऊपर लकड़ी ना पट्टा हो या तख्त हो एनो ऊपर और दीवार थे की कुछ दूरी बनाई अपने रखी जुए। भंडारण में समय एना जगह ऊपर नमी ने चूहत की बचावनी आपने अच्छी व्यवस्था रखी जुए, और मक्का ने हमेशा कटाई ने सही समय ऊपर इन्हें सही पकवा बाद साफ मौसम में सावधानी पूर्वक कटाई ने बाद इन्हें वेसू जुए। तो किसान भाई आनी सब बातों अगर आप पालन करेगा तो दाना में गुणवत्ता बने लिएगा, और गुणवत्ता अच्छी है तो अपने इनमें बाजार नो भाव भी अपने ठीक मिलेगा, और भंडारण में जो नुकसान था इन्हें भी अपन कम करी सके। तो आनी सब वातन जेने समय पर कटाई अच्छी सुखाई ने सुरक्षित भंडारण आस आपने मक्का उत्पादन की लाभ आलेंगा। तो किसान भाई देखो बातें और करनी थी पर आज नो जो समय है पूरा थी रो है, काले कई नवी जानकारी लेने आपने फिर मल तार तक आप अलो आज मांझी भाई ने आज्ञा ए आवजू राम राम राम राम।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना खेती की बात कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अब पेश है लोक संगीत चुन्नीदास व साथियों के स्वर में।

0: डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना चुन्नीदास व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी, और कहानीकार हैं दीपक भरत श्रीमाल।
1: रेत पत्थर और सीमेंट मिलाते मिलाते सुशीला सविता से बोली, क्या अपने जीवन में रेत पत्थर और सीमेंट के ही लेख लिखे हुए हैं? अपना बचपन भी कैसा है, एक तरफ जहाँ किलकारियां मारते और कंप्यूटर पर थिरकती उंगलियों के सहारे कुछ लोग अपना नसीब लिख रहे हैं, लेकिन गरीबी ने तो हमें पत्थरों से बांध सा दिया है। सविता बोली, गरीबी इसी का नाम है। मेरे घर में भी 8 सदस्य हैं। पिता के पास 2.5 बीघा जमीन का टुकड़ा, कहने को तो हम सबसे बड़े बांध के बैकवाटर क्षेत्र में रहते हैं। अपनी आंखों के सामने कल कल बहते पानी को देखते हैं, लेकिन हमें एक बूंद भी पानी नसीब नहीं होता। बस बारिश आती है और मक्का की फसल की आस जग जाती है। वर्ष भर में एक ही बार फसल हो पाती है। आजादी के 6 दशक से अधिक बीत चुके, लेकिन आज तक लिफ्ट का सपना सपना बना हुआ है। ऐसे में जमीन भी कितनी उपज दे। रेत भरी तगारी डालते डालते सविता की आंखों में आंसू छलक आए। सुशीला बोली, देख मेरे घर में 6 सदस्य हैं, जमीन भी तेरे बापू जितनी ही है। अब घर वाले हमें शिक्षा दे तो कैसे दे? कई बार तो पेट पर गीला कपड़ा बांधकर पेट की आग को बुझाने पर विवश होना होता है। सविता और सुशीला की ये बातें चल ही रही थी कि मेट गौतम आया और बोला, अरे आज तो 10वीं का परिणाम आया है, तुम लोगों ने भी तो 10वीं की परीक्षा दी थी। परिणाम की खबर सुनते ही सुशीला के हाथ रुके तो सविता के हाथों से तगारी फिसल पड़ी, लेकिन एक ही पल में दोनों की खुशी गायब। अरे रिजल्ट कैसे देखें, यहाँ तो अखबार भी नहीं। दोनों के मन में परिणाम को लेकर हलचल मची हुई थी। न जाने क्या परिणाम आया होगा। निजी भवन मालिक जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसने इन लोगों की बातें सुनी

क्या परिणाम आया होगा। निजी भवन मालिक जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसने इन लोगों की बातें सुनी तो बोला, अरे आप लोग 10वीं की परीक्षा दे चुके हो, विश्वास नहीं होता, इतनी मेहनत के बाद पढ़ाई कैसे कर लेती हो। सुशीला बोली, अरे साहब मजबूरी है, घर के 8 सदस्य है, पास में जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, ऐसे में मजदूरी करना तो हमारे नसीब में लिखा है। मालिक को उनकी बातें चुप सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, अखबार ही चाहिए तो निराश क्यों होती हो, अभी अखबार मंगवा लेते हैं। मोटरसाइकिल उठाकर निकला और 5 मिनट में अखबार सामने था। सुशीला और सविता की आंखें बंद हो गई और हाथ जोड़ हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान हमारी नैया पार लगवा देना। मालिक बोला, अरे भाई यूं ही आंखें मूंदे बैठी रहोगी या अपने रोल नंबर भी बताओगी? रोल नंबर होंगे तभी तो परिणाम देख पाएंगे। सबसे पहले सुशीला ने अपना नंबर बताया। प्रथम श्रेणी में तो कहीं नंबर नजर नहीं आया। द्वितीय श्रेणी में नंबर देखते ही मालिक ने पूछा, अरे भाई रोल नंबर तो सही बताया ना? सुशीला ने कहा, हाँ बाबूजी बिल्कुल सही है। मालिक ने खुशी कहा, आज तो तुझे मिठाई खिलानी होगी। सुशीला ने कहा, बाबूजी परिणाम तो बताओ। मालिक ने कहा, तू द्वितीय श्रेणी से पास हो गई है। अब सविता ने अपना नंबर बताया, द्वितीय श्रेणी में उसका भी रोल नंबर मिल गया। खुशी से झूमती दोनों बालाओं ने गैती फावड़े और जमीन को चूम लिया, हाथ जोड़ हुए ईश्वर का आभार मानने लगी। मालिक की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक पड़े। रोज काम के दौरान चिल्लाकर नसीहत देने वाला मालिक एक मिनट में अपने पुराने तेवर में लौट आया और गौतम को जोर से आवाज देने लगा, गौतम। दोनों बालाएं कांपने लगी कि थोड़ा सा काम रुका नहीं और मालिक के तेवर लौट आए, लेकिन यह क्या। जैसे ही गौतम आया, मालिक का हाथ जेब में गया और कहा, गौतम जा मिठाई लेकर आ, आज तो सुशीला और सविता ने कमाल कर दिया है। गौतम मिठाई लेने गया, इतने में मालिक ने अपने पत्रकार मित्र को फोन गनगनाया और कहा, देख भाई आजा तुझे मिठाई खिलाता हूँ, मेरे यहाँ मजदूरी करने वाली दो बालाओं ने रेत पत्थर मिलाते मिलाते 10वीं की परीक्षा पास की है, मिठाई के साथ तुझे खबर भी मिल जाएगी। पत्रकार मित्र बोला, अभी आया। सुशीला और सविता तो जमीन पर बैठकर कहीं खो सी गई। गौतम मिठाई ले आया, इतने में पत्रकार भी वहां पहुंच गया। सबसे पहले मालिक ने मिठाई का टुकड़ा जमीन पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारी धरती माँ को सबसे पहले मिठाई खिला रहा हूँ। उसके बाद डिब्बा सुशीला को थमाकर कहा, सबको मिठाई खिलाओ। मिठाई खिलाने के बाद पत्रकार ने सुशीला से बातचीत शुरू की, कहाँ की रहने वाली हो? तो बोली, बाबूजी पाती नगरा कटुम्बी की हूँ। घर के सदस्यों की जानकारी लेने के बाद पत्रकार ने पूछा, कितना कमा लेती हो? तो सुशीला बोली, 90 रुपया मिलता है जिसमें से 20 रुपया गाड़ी के किराए में निकल जाता है। मेरा एक भाई एसटीसी कर रहा है, जब उससे पूछा गया कि वह क्या करना चाहती है तो उसने बताया, बाबूजी नर्सिंग करना चाहती हूँ। गरीबी तो खैर हम भाग्य में लिखवा कर लाए हैं, लेकिन बीमारी भी हमारे क्षेत्र का पीछा नहीं छोड़ती। अगर मैं नर्स बन गई तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की सेवा कर पाऊंगी। पत्रकार ने कहा, रेत पत्थर और खेतों में चलने वाले हाथ तो भारी हो जाते हैं, ऐसे में इंजेक्शन कैसे लगवाओगी? तो सुशीला बोली, बाबूजी अभी तो हमारे हाथों में आपने गैती फावड़े और तगारी देखी है, लेकिन अब तक हम कलम चलाते आए हैं तो इंजेक्शन लगाना कौन सी बड़ी बात होगी। जब सविता से सवाल किए गए तो उसकी भी कहानी वही नजर आई कि परिवार में 6 सदस्य है, पिता के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा, वे 3 बहनें और 3 भाई है। बड़े भाई मजदूरी करते हैं, पिता अनपढ़ है, बस पेट भरने के लिए दिन भर मजदूरी ही मजदूरी की सोच उनमें जगी रहती है। उसने बताया, पेट के लिए हम पत्थरों से अपनी तकदीर लिख रहे हैं। पत्रकार ने पूछा, यह काम करते हुए कोई झिझक नहीं होती है क्या? इस पर सविता ने कहा, बाबूजी अपना पसीना बहाकर हम कुछ बन जाएंगे, इसमें शर्म कैसी। उसने बताया कि वह भी नर्सिंग करना चाहती है, पिछड़े क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य के प्रति चेतना का अभाव उसे कसकता है, न जाने मासूमों को किस हालत में छोड़ दिया जाता है। शहर में तो हाथ धोने की बात चलती है, लेकिन गांव में तो नहाने का भी पता नहीं चलता है। इन स्थितियों को नर्स बनकर मैं बदलूंगी। इसके बाद पत्रकार ने पूछा,

कि तुम दोनों ने क्या कभी विभाग देखे हैं? तो उन्होंने नाम सिर हिलाया। फिर उनसे पूछा गया, कृषि अनुसंधान केंद्र, मृदा परीक्षण केंद्र, वन विभाग जैसे विभाग नहीं देखे क्या? तो वे आश्चर्य से पत्रकार को देखने लगी। इस पर पत्रकार ने बताया, कम पानी में अधिक खेती कैसे हो, इसकी जानकारी वन विभाग दे सकता है, कृषि विभाग दे सकता है। साथ ही इस जमीन में फलदार पौधे कैसे लगे और कितने लगाए जा सकते हैं, उन्नत पौधे कहाँ से मिलेंगे, यह जानकारियां भी इन विभागों से मिल जाएगी। साथ ही मृदा परीक्षण केंद्र में तुम्हारे खेतों की मिट्टी की जांच हो जाएगी, जिससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी फसल अधिक लाभ दे सकती है। सुशीला और सविता पत्रकार की बात आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी। इन बातों ने उन्हें सपनों में धकेल दिया। दोनों के मुंह से निकला, हमारे माँ बापू भी अब अधिक कमा पाएंगे, हम तो अपना भविष्य और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा का सपना संजोए हुए थी। हमारा ध्यान सिर्फ आर्थिक और सामाजिक सेवा की ओर था, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई। अब हम इन विभागों में जाएंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को जगाएंगे। सरकार ने तो इतने सारे विभाग बनाए हैं, इतनी सारी सुविधाएं दी है, हमें तो पता भी नहीं। आज आपने जो राह दिखाई है वह हमारे क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदल देगी। बाबूजी, आज जो तस्वीर आपने दिखाई है, अब हम उसमें रंग भर देंगे। मालिक बोला, अरे गौतम जा चाय ले आ। सविता और सुशीला बोली, नहीं मालिक चाय नहीं, अब तो आप छाछ मंगवाओ, चाय तो नुकसानदायक है। अब आंखें जब हमने खोली है तो आप भी थोड़ा सा बदल जाओ, चाय के बदले छाछ अपनाओ। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई नर्स बहन जी, अब क्या इरादा है? तो मुस्कुराते हुए दोनों बोली, साहब आज तो आपने ऐसी कीमत दी है जो हम भूल नहीं पाएंगे। मजदूरी का पैसा तो आता और चला जाता है, लेकिन आज जो राह दिखाई है उससे तो हम भारत को मजबूत बनाएंगे। देखना, जिन हाथों में रेत पत्थर गेती फावड़े है, उन्हीं हाथों में कल इंजेक्शन होगा और दूसरे हाथों में जागृति की मशाल होगी। जिस तरह से मेरी बहन शिविर में पढ़ रही है, कंप्यूटर सीख रही है, देखना उसी तर्ज पर यह बाला एक दिन इस क्षेत्र और अपने देश का नाम रोशन करेगी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी कहानी और कहानीकार थे दीपक भरत श्रीमाल। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता गायक फिल्मकार किशोर कुमार की आवाज से सजे गीत उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं उन्हें।

0: नापन फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें खट्टा मीठा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वादा,
5: हाँ जी वादा।
0: विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और आज है गायक अभिनेता फिल्मकार किशोर कुमार की याद का दिन।

0: किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज जानी दुश्मन फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।

जमीन आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जख्मी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें, गौहर कानपुरी के बोल, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक

0: इराक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
1: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परम्परा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
2: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
0: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया।

0: पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरूष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदाम्बी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरूष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसी ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 8:15 हुए हैं। अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

सभी कुछ दिल

से कार्यक्रम सुनने वाली श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रंगत रंगत शब्द उर्दू हिंदी का बहुत ही खूबसूरत शब्द है। रंगत का अर्थ केवल रंग नहीं बल्कि रंग का असर, चेहरे की चमक, वस्तु की शोभा और मन की दशा है। जब कोई कहता है आज तुम्हारी रंगत बदली बदली सी लग रही है, तो वह तुम्हारे चेहरे के रंग को नहीं तुम्हारे दिल के हाल को पढ़ रहा होता है।

0: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल। वो कहा है मिठाई?
1: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। श्रोताओं, मनुष्य के चेहरे पर 7 रंगते आती हैं, खुशी में गुलाबी, शर्म में लाल, क्रोध में तमतमाती लाल, भय में पीली, शौक में काली, शांति में सफेद और प्रेम में सतरंगी। बड़े बुजुर्ग चेहरा देखकर ही मन की बात जान लेते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
3: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर।

श्रोताओं, जीवन में अपनी रंगत बदलता है। बचपन की रंगत मासूम, जवानी की रंगत जोशीली, बुढ़ापे की रंगत शांत। जैसे हमारे परिवार में दादा दादी की रंगत अनुभव वाली सफेद, मम्मी पापा की रंगत ममता वाली, भाई की रंगत हिम्मत वाली,

जब डरते हैं तो खून दिल की तरफ भागता है और चेहरा पीला पड़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज की रंगत ही देखते हैं। श्रोताओं, बिना रंगत के जीवन फीका है। जैसे बिना नमक के खाना, वैसे ही बिना रंगत के चेहरा। रंगत ही तो बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। एक अच्छी रंगत मन साफ रखने, खुश रहने, परिवार से प्यार करने और मिट्टी से जुड़े रहने में आती है।

श्रोताओं, विज्ञान कहता है रंगत खून के दौरे से बनती है। जब हम खुश होते हैं तो खून तेजी से चेहरे पर आता है और रंगत गुलाबी हो जाती है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।

0: यहाँ प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
4: क्या हो गया ऐसा?
3: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
4: ये कमाल कैसे हो गया?
3: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
4: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
3: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा ना मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में?
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में। प्रातः के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। ओम माथुर को केरलम का राज्यपाल बनाया गया। पंचायत राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी जुटाने के लिए रीको की ओर से ड्रोन सर्वेक्षण कराया जाएगा। शुरुआती चरण में करीब 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। इससे औद्योगिक भूखंडों की स्थिति, निर्माण, भूमि उपयोग, सड़क और विद्युत सुविधाओं की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। सर्वेक्षण के आधार पर 2D मानचित्र और 3D मॉडल तैयार किए जाएंगे। हर भूखंड की अलग डिजिटल विवरण पत्रिका भी बनाई जाएगी। इसमें भूखंड की पहचान, सीमाओं और भूमि उपयोग से जुड़ी जानकारी होगी। रीको की इस पहल से औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाने और उनके प्रबंधन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में नागौर

0: और जिले ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिले को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ये सम्मान जिले के किसानों और कृषि विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि योजना की नियमित निगरानी, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से ये उपलब्धि हासिल हुई है। धौलपुर में बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि चंबल नदी क्षेत्र में पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही लगातार कार्रवाई करने से अवैध खनन के मामलों की संख्या में कमी आई है।
1: विगत कुछ समय में हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीनों से शून्य या एक प्रकरण ही इसमें जो अभी तक दर्ज हुए हैं, जो कि पूर्व में करीब 26 से 28 प्रकरण प्रति माह दर्ज होते थे, अब वो शून्य पर आ गए हैं। विशेष रूप से जो इसका हमारी जो एनफोर्समेंट है आरएसी के जमा के 10 थाना पर स्थापित किए गए हैं, वो साथ ही अवर कमान के मार्फत मॉनिटरिंग है वो निरंतर की जा रही है। पूर्व में जो इस तरह के विरोध है जो खनन करते थे उनके विरुद्ध 107 BMSS के तहत इस्तवासा भी पेश कर उनके जो वाहन है, संपत्ति है, उनको भी अर्जित करने की कार्रवाई की जा रही है।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। बाजार की स्थिति और जन स्वास्थ्य की जरूरतों को देखते हुए इस सूची में समय समय पर कैंसर की अतिरिक्त दवाएं शामिल की जा सकती हैं, जबकि कम कीमत वाली दवाओं को सूची से बाहर रखा जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के जिला परिषदों और उनसे संबंधित पंचायत समितियों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। भारत और ग्रीस लोक प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रीय लोक प्रशासन और स्थानीय सरकार केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर वासिलिस एक्सारहोस के साथ बातचीत की। बैठक में प्रशासनिक सुधार, साइबर सुरक्षा, आपात प्रबंधन और जन शिकायतों के निस्तारण पर चर्चा हुई। श्रीनिवास ने लोक प्रशासन में मानव केंद्रित एआई के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने राजस्थान संपर्क और राज्य उन्नति मंच के अनुभव साझा किए। श्रीनिवास 15 अक्टूबर तक एथेंस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। जयपुर स्थित हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में कल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मास्टर क्लास विद यूनेस्को कार्यशाला रखी गई। यूनेस्को के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में अधिकारियों को विश्व धरोहर संरक्षण और एआई के जिम्मेदार उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। यूनेस्को के विशेषज्ञों ने प्रशासन में एआई के उपयोग में पारदर्शिता, समावेशिता और लैंगिक समानता पर जोर दिया। संस्थान की महानिदेशक श्रेया गुहा ने कहा कि शासन में एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए ताकि तकनीक के साथ मानवीय संवेदनशीलता बनी रहे। और अब मौसम। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं बीकानेर संभाग और शेखा

0: सीमावर्ती क्षेत्रों में भी तेज रफ्तार हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बरसात का दौर 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान अगले कुछ दिन राज्य में दिन और रात के तापमान में गिरावट के आसार हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं फलौदी और बाड़मेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। 16.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सिरोही में सबसे सर्द रात रही। इस बीच जयपुर में मौसम में बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। जेके लोन अस्पताल में आउटडोर के मरीजों की संख्या 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरएन सेहरा के अनुसार इन दिनों खांसी, जुकाम और वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं।
1: देखिए, अभी सीजनल डिजीज का जो पीरियड था, जब स्टार्ट हुआ उससे पहले ओपीडी करीब यहाँ से 1200 से 1300 चल रहा था, और अभी जब भी पिछले एक महीने, डेढ़ महीने से या दो महीने से जो सीजनल डिजीज का है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, मौसम बदला है, उस मौसम बदलने से यहाँ पर जो वायरस जनित बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं, और उसके बढ़ने से हमारे जेकेलन हॉस्पिटल का ओपीडी भी करीब 25-30% बढ़ गया है। और हमने मरीजों की परेशानी को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए हमने हमारा ओपीडी का टाइम भी 2 घंटे और बढ़ाया है। जो एक अमूमन टाइम जो जीएच के दिन 9 से 11 रहता है, हमने उसको बढ़ा के 9 से 1 किया है, ताकि मरीजों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकें, मरीजों की परेशानियों को हम कम कर सकें। तो इस तरह का हमारा प्रयास रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। ओम माथुर को केरलम का राज्यपाल बनाया गया। पंचायत राज संस्थाओं के पहले चरण की चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे बाबुल सुप्रिया की आवाज में कुछ गजलें।

0: या सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त।

0: कर्तव्य है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
1: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट अब 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
0: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन

0: प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: हेलो,
2: हाँ हाँ,
1: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।

एफएम बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुनी बाबुल सुप्रिया की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक है। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियाँ। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। यह जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग

घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियाँ गीली हों और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ, 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैचे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना? खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य

तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अरबेशीर बुरजोर जी तारापोर।

0: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हथगोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
7: ये क्या हुआ?
6: अरे
7: बचो बचो बचो,
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
8: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
9: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
10: सही में
9: बहादुर सैनिक हो तुम।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
11: May I come in, sir?
8: Yes, come in.
11: Sir.
8: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
11: सर।
8: Well done, Adi. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
11: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
8: हाँ हाँ, कहो।
11: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा

0: परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो, शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
2: सब
3: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
4: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
3: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
4: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वे पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
5: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
6: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
5: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
7: जी जनाब।
8: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
9: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
6: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
9: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
6: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
9: फायर।
6: सर ये टैंक तो गया।
9: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
6: सर ये टैंक तो गया।
9: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है।
5: गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
6: यस सर।
3: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
4: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल

0: अरापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरंग क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: FM.

101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहां इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसे कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत नहीं, पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पे नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग कि भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिर्फ एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर

0: स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया
1: आप है। उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
0: हाँ।
1: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं सर।
0: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता
1: बहुत,
0: है
1: बहुत, बहुत, बहुत
0: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट।
1: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं,
0: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
1: हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
0: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं।
1: हाँ,
0: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
1: जो भी हम लोग है तो इंसान ही ना
0: जी,
1: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत एक दो साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है। वो न्यूज देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
0: जी जी,
1: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते
0: जी,
1: बताना तो होता ही है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। अब बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है, जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत वक्त बीत गया,
1: आसमान तो जमीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पे पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीजें हैं मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है फिट है, एज अ डॉक्टर
0: कोई कमी ना रह जाए।
1: हाँ, कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
0: जी।
1: हाँ, वो सर बड़ा पाव खा लिया था
0: जी,
1: मैं भी मानता हूं, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, तो आपकी पहुंच गांव गांव कोने कोने में है, तो
0: ये पूरी दुनिया में।
1: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा।

0: अवेयरनेस आ रही है, बट अभी भी बहुत जरूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया, तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल
1: पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा
0: ये बहुत
1: तफसील से
0: बहुत
1: बताइए।
0: अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए, नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन, मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है, दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है, और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो, और विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है।
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना
0: हाँ
1: सबको।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बातें हैं
0: हाँ
1: उनको
0: वो
1: इग्नोर
0: इग्नोर
1: करते हैं
0: करते हैं,
1: जी।
0: दांत में दर्द है ठीक है यार, कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे, है ना।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहां एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
1: जी
0: जीवन है इस जीवन का बहुत
1: देखिए,
0: बेहतरीन,
1: मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं।
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त
1: मुस्तैदी
0: से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोए तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल,
1: बट हाँ फिर भी हम डॉक्टर हैं, हम लोग तो, हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आज का सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी,
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है सर मेरे ख्याल से। इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें, हम दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी,
1: आप स्ट्रेस में है तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना।
0: बिल्कुल,
1: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर।
0: जी जी,
1: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये, चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम की

0: ये दिन जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और आईसीयू तक मामला चला जाता है। इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ, तो बारिश का मौसम का एक अलग मजा है, लेकिन मजा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और खासकर इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें,
0: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता, क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं, एसी में होते हैं। पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
1: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
0: जी जी,
1: आप देखें ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें, और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
0: जी, एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है।
1: हाँ,
0: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
1: सही बात
0: है ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को, इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
1: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है, और उसके ही परिणाम है कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना, किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
1: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं, तो उस वक्त था कि 10-20-25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही अब हमने यूज कर करके, मिस यूज करके, यूज नहीं करके, हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
0: कि दवाएं असर ही नहीं कर,
1: असर ही नहीं कर रही है। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है, और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाए, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था। वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है, जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
0: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
1: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है, आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट, पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप।

0: जी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण नहीं कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें, और दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक
0: बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से

0: भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ, बहुत
1: तो बाप की पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू, उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: तो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है,
0: और
1: बहुत अच्छा लगता है ऐसा। हमेशा स्ट्रेसफुल जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था, और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से निकाले, सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसे आपने पूछा पैनिक ही का, वो जब सामने से तो हमारा डर खत्म हो जाता है। वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्य सुनाता हूँ।
0: जी,
1: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
0: संगीतकार रवि की।
1: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
0: जी जी,
1: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था, और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला। तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा, हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा, हाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब, आपने मेरा नाम पढ़ा क्या बोर्ड पे, नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
0: अरे क्या बात।
1: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे,
0: कमाल के इंसान। मेरा भी उनसे एक नाता रहा है। और
1: अच्छा अच्छा,
0: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुनाते थे। उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
1: अरे

0: बहुत कमाल के कलाकार।
1: अभी जब
0: हैं।
1: गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हो या बर्न विक्टिम्स हो, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
0: अपने
1: उनको कैसे संभालते हैं?
0: मैं सफदरजंग के बर्न्स यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
1: ओ ओ ओ,
0: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो
1: जी।
0: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में। हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे, फिर अचानक फोन बजने लगा, हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहां भी हो जितने भी दोस्त हो सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था वो देख नहीं पाया, डॉक्टर होके वो वहां पे फेंट कर गया।
1: ओहो।
0: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे से रोंगटे खड़े आती है। और वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
1: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
0: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। मैंने बताया जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
1: बिल्कुल। आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
0: मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाकया आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके, तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। हर आदमी पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका। तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं।
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जो हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत पहले
1: तुरंत आप जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाए, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने।
1: हाँ, नुस्खे वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये, मोटा मोटा समझाने के लिए जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए?
1: देखिए, जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है।
0: ओ,
1: जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो वो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है, और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज

0: नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी। अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है। हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन, उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं,
1: जी
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है। आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर रहे जो इससे जुड़ा हुआ है, उसे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंग्यू माउथ
1: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा
0: टेढ़ा मोड़ा, आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता आ
0: मतलब
1: रही,
0: अविरूपता आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना चाहिए।
0: हाँ, कहीं भी सिमेट्री जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है
1: इन
0: डॉक्टर के
1: दोनों
0: पास।
1: परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसा नहीं, नहीं बाबा आसपास पहले वहां पहुंच जाए आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाले जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी अब नॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे,
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान,
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।
0: आज मौसम बड़ा

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने जो, आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं, उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं दिल्ली में था और मजा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा लेता हूँ, वो मजाक में चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ हाँ, और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा।
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होता ना, रॉक स्टार बनना है बस, गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना, और वहां से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया। क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना है कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइमिंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सबसे भी ज्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी,
1: सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं यार सेफ्टी फर्स्ट। अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती।

0: जाती है ना, बच्चा रोएगा, बट ठीक है हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन, हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
1: उसकी जान बचाना,
0: उनकी जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देखिए इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना,
1: लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं
0: और
1: आईसीयू में खास तरह का बर्ताव किया जाए। जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए
0: और
1: इंतजार किया जाए।
0: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट कभी कभी दिखे हम इंसान ही हैं।
1: जी जी
0: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें मस्त रहें,
1: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
4: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
4: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये है विविध भारती।

एफएम 92.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे फाल्गुनी पाठक के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग।

0: कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना फाल्गुनी पाठक के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज करते हैं फिल्म टू स्टेट से, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपता की आवाज में गीत। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में, संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं अंकित तिवारी के स्वर में तुम बिन टू फिल्म से ये गीत, जिसको लिखा है शकील आजमी ने और संगीतकार हैं अंकित तिवारी।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज़ ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज़ ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं प्रेम रतन धन पाया फिल्म से पलक मुच्छल की आवाज में गीत, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं हसी तो फसी फिल्म से सनम पुरी और शिप्रा गोयल के स्वर में गीत। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

0: एफएम बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
2: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना या अपने

0: आप में एक बड़ी क्षमता है,
1: लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
2: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकारे नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों

में ले जाती है तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है, तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। इस गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों के महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे ऐसे

भोला भाला अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पड़

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रत वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के

कटी पतंग फिल्म का गीत अब आपको सुना रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना, इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: सेना।
1: साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें। उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

गांधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

बता दी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है।

0: जब ये तुम्हारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो साथियों, आज के संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की, वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरों भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा गरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो

0: वो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ी ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं। लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत, अशोक कुमार की आवाज में। आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। या ठना

0: भप भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

लाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान फूल पक डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गाँव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुत्तल डिंडीगल डिंडीगल कुत्तल पट्टम दमली पट्टम मतलब पट्टम उंगोल नट गोल नट गोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

तो आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूँ, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारती है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। शब्द पहचानिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। आज अभी ये जो गीत बजा, इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है, जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है, जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए, मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए, लेकिन आपके गीतों का कारवा आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: राही एक रास्ता दो राही एक रास्ता।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं। इसलिए सुहानी सफर का आनंद भी ले तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते ले। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहां गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए, रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं, जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल की कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशन को देखना मन को सुकून देता है। जी हां, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने यह भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहां रहे उसकी

0: अनुभूति हो पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी, जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हां बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है, श्रीराम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आप सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं, तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है, लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं

0: स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए। पर आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत जरूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूं। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूं तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

साथी लिख रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा आगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर

0: गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की

0: सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्रीय सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है। लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक

0: आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश टोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय

0: किया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड पांचवीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज सोडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: ऐसी बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे रे रे,
3: भूल गया यार,
2: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। हाँ, दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाद

0: चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा।

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मेरा बोझा साधना फिर बेड़ा पारू।
1: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारो।
2: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत, गीता दत्त और साथियों की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल करा रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
2: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना।
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
2: ये 9 दिन आते हैं
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना
2: जी,
1: बल्कि जो पहले था गरबा दांडिया का

0: जो स्वरूप डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है। तो हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
1: बिल्कुल, और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो।
0: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना। हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है। उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई
1: चारपाई।
0: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
1: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
0: थी, चांदी की सुपारी भी होती थी।
1: चांदी की सुपारी,
0: अंगूठी,
1: बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी उसमें, मतलब वो,
0: लेकिन
1: टूटी फूटी भी, साबुत भी,
0: उन्हीं सबके बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
1: बिल्कुल
0: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आता था, कि वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी।
1: सही बात है
0: ना जी, कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना, लेकिन खुद के लिए।
1: आपने बिल्कुल यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए।
0: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब साथ साथ, साथ हमारे श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने, माँ की अलमारी में छिपे उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विमल भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और सखी विशेष में हम बात करने वाले महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी के संस्थापक भी हैं। और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्त में डूब जाते हैं।
0: सुनते हैं ये।

0: नौ दुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और खास बात यह है कि चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही है ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही है। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा और
1: सुपर माउस
0: फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी, और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके सीईओ के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की, और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए पीआर मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया विज्ञापन मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहां पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी, और इसके बाद साल 2015 में गेट जेलाइज की को फाउंडर बनी, और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आईजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद मनी फ्रंट की मार्केटिंग हेड और महिला बनी। वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी। और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों के बाद करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है, और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा आईडीएमए 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है,
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं, और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं, और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ

0: विविध भारती पर। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा है, तो उसमें अपने उद्गार लिखे। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा दांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज्यादा होता है।
3: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी
2: और
3: से होता है।
2: दोस्ती भी यहां पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहां पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
3: बिल्कुल, क्योंकि उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही है। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोले और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
2: पूरा बाजार भरा होता है।
3: बिल्कुल,
2: इस समय बाजार में जाएं तो वही चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
3: बिल्कुल,
2: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
3: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते।
2: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
3: जी,
2: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूमधड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की यह परंपरा बहुत पुरानी है। ये हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
3: सब चीज मिक्स हो गया है। बिल्कुल,
2: और बहुत तेज संगीत, अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
3: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और

इंडिया का यह बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए,
1: बताइए।
0: वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही हैं। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है अभी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर।
1: जी, और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया, इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा।
1: जी, और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते ही ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल, बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने
1: नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काट के डोलती थी कमरे में।
0: माँ की साड़ी पहनने का भी एक अलग सुख।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: साड़ी पहनते थे।
0: साड़ी पहननी नहीं आती थी तो लपेट के आईने के सामने देखना और अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार होती थी,
1: और माँ की माथे की बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था।
0: तो लेकिन उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे, उनके भीतर उनके मन में क्या चल रहा होता है वो सबके बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है,
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने समेटने के लिए।
0: बिल्कुल, और वहाँ माँ की अलमारी खोलते हैं, वहाँ जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहाँ कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी।
1: बिल्कुल,
0: अपने बचपन की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ के, हम सबके माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती है
1: क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी, तो इस तरह की यादें होती है कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा, अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था, संभलता नहीं था,
1: और कई बार तो फिसल जाए अगर गोला बना भी रहे, छोटे छोटे हाथों से फिसल गया तो दूर तक चला गया
0: वो धागा, फिर धागे के पीछे पीछे भागते,
1: फिर मालूम पड़ा उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम रहने दो, तो लेकिन
0: और बड़ा मजा आता था। खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं उसको अंगूठे और छंगुनिया में ऐसे करके तिकलना नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी बड़ा मजा आ रहा है।
0: देख नहीं सकते तो हम ये जो अभी आपने
1: एक्शन किया
0: ये दिखा सकते थे, मंजू जी बाकायदा वो हाथ ऐसे हिला के दिखा रहे हैं।
1: मेरे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकलना बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौके की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता माँ तुम्हारा

0: हमारा सपना क्या था, बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की मां के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं है। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही है। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा। अब कहने का ये मतलब नहीं कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए,
0: जी उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती हैं और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती हैं और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें माँ की उस अलमारी में दिख जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीजें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाते थे।
1: और ममता जी कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी रखती थी।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते थे। और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है,
1: मांझा लपेटना भी टिकल्ला जैसा बनाते थे,
0: पतंग उड़ा रहे हैं और मांझा पकड़ो आप संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले

0: के और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे, वे सिक्के उनके नहीं हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो सिक्के।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा, उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था, और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में और चाबी कहीं छुपा के।
0: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती थी।
1: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
0: बिल्कुल, और जब वो स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे, और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
1: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं, आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
0: हाँ उल्लू सीधा करना, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में जहां श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी है।
1: तो हम अच्छा मंजरी जी, आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी सखी इन्होंने लिखा है, अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती है, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी, साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटा सा पैकेट बना रहता है जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती है, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है, पेन पेंसिल रबर स्केल सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए, और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन है। अब एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को है। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
0: खर्च का हिसाब,
1: खर्च का हिसाब, और तोहफे के रूप में जैसे शादी विवाह में शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में किसी मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी, आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताजा करते हैं।
1: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी।
0: बिल्कुल, से कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं, तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने अपनी मुहावरे कहा पे।
1: तो और आज का विषय भी मुहावरा है
0: जी।
1: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाए। और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं।

0: जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं। मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें। किस तरह
0: पर ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ गए और सामने वाले की मदद ना करें। और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है। इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखिए, कभी भी यह मुसीबत पड़े तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
0: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, आप बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का, तो एक पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ? क्योंकि शायद दिलचस्प बात यह है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूं। सोया हुआ हूं, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूं, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें।
1: अच्छा।
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल,
2: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खाके, या सत्तू, सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा।
2: जी। तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए।
1: जी।
2: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था, ना तो उस समय सनस्क्रीन था ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना?
1: बिल्कुल, आपकी बातों में झलक रहा है।
2: हाँ जी। और मैं निकलता

0: जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे और सामने रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे।
1: बिल्कुल,
0: किसी तरह इसको मैं इम्प्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैं। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक?
0: पंचायत का ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में।
1: अच्छा,
0: साल 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त, वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे। तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था
1: जी।
0: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो। एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा, रोटी का काम आपको सौंपा गया था?
0: नहीं नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे। अच्छा। और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे सो जाना है। तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा,
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा, छोटा और मोटा रूप। छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी। अच्छा। बहुत मोटा मोटा मैं, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था वो
1: जी।
0: मतलब 1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं बहुत मोटा मोटा बनाने लगा। खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं, उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे।
1: अच्छा।
0: सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था, एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रीशियन का और एक दूल्हे का। बोला एक दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रीशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देके फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के कि यस, ऐसा दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर है और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर है, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था।
1: अच्छा।
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास, मुझे लगा कि यार ये क्या ही, मतलब कहा मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए।
1: अच्छा।
0: ये नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं, बहुत समय, बुढ़ापा तक वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया ऑडिशन। हाँ, दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं उन मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं टीवीएफ जानता भी नहीं था।
1: अच्छा।
0: कुछ वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते
1: पॉपुलर।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: पॉपुलर।
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है
1: जी, जी।
0: इमरान हाशमी
1: सुनवाते
0: का दौर था ये,
1: सुनवाते।
0: हाँ जी, बिल्कुल।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस हिसाब से वो स्लो बड़े आराम से इत्मीनान से बोलता है चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी, तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं। तो

0: पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया। अच्छा। मतलब उसको जितना मैं पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा मैंने
1: जी,
0: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये पहलाचा से ऐसी बातें कर रहा या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
1: बस उसमें रमना और बसना होता है
0: बस। तो समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
1: जी,
0: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था
1: जी,
0: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है, आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है, गंदे से हो जाते हैं हर जगह। तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था
1: जी,
0: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं 1-2 पेज पढ़ लेता।
1: अच्छा।
0: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
1: जी।
0: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है, मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे। क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हां मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी।
1: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था, और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले
1: उस पर पता होना,
0: बिल्कुल पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने
1: जी।
0: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं, तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पे मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं। जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया,
1: बिल्कुल, और वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है जिसकी मैं बात करना चाहूं, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल देता है। हाँ, तो इस तरह के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
0: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं, हाँ, तो स्क्रिप्ट में लिखा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो है दीपक सर, अरुणाव सर और चंदन सर जो राइटर है, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है
1: जी,
0: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है, और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस अपने फ्रेश होकर के नहा के अपने बेड पे आते हो तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने सीन में
1: संतोष मिलता है,
0: यस
1: कि आज क्या किया,
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया मैंने, और बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है फिर आप वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किनके साथ मिलना जुलना?

0: लगा रहता होगा।
1: देखिए, एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है। और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा
0: जी
1: सेट पे, हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
0: जी
1: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं, और जैसे ही हमारा पैकअप होता है हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूं। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे, सिर्फ
0: कभी
1: काम।
0: कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात हो फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
1: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
0: जी
1: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है।
0: जी
1: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूं, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता
0: जी जी
1: है ना।
0: जी बिल्कुल
1: तो लोग को लगा, अरे क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
0: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
1: देखिए, उनके नजर, उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है,
0: हाँ
1: बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूं, मैं
0: अच्छा
1: जैसा था वैसा ही हूं। पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है, और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में,
0: जी
1: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे कि अरे।
0: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
1: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो अब, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा
0: कुछ
1: पहले
0: कुछ
1: चंदन
0: बुरा
1: को।
0: लग जाएगा।
1: हाँ, तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूं भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो, जैसा पहले थे वैसे ही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था आज भी वैसे ही हूं, घर जाऊं या कहीं भी जाऊं, मैं वही कहा कि मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है। और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूं कि वो अगर वैसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूं। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर है, जो
0: बिल्कुल
1: इंजीनियर है, वो या जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज्यादा है।
0: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते आपके पसंद का ये गीत
1: बिल्कुल सुनेंगे हम,
0: जरूर बताएं
1: हर घड़ी बदल रही है
0: रूप
1: रूप
0: जिंदगी,
1: जिंदगी की,
0: बिल्कुल सुनवाते हैं
1: है
0: गीत।
1: ना।

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर की।
1: वाह,
0: गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ, उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना चाहें? कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल, गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था, यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूंगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया बांद्रा में उनके ऑफिस

0: और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
1: टाइपकास्ट
0: कर देंगे। और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें
1: जी।
0: और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेटकीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए।

0: कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो करोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरी हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करूँ।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली और मैंने वो फिल्म किया। और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा। और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, तो एक ऐसा सीन था वहां पर कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: जबकि मैं दर्द के मारे तड़प रहा था
1: जी।
0: तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस लाके मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैप अप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुलाओ। और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी।
1: अच्छा।
0: कि मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था। तो प्रोडक्शन भागा भागा, अरे सर आपको ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मतलब ये
1: पर्दे पे बचपन से देखा।
0: हाँ जी।
1: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात।
0: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी
1: जी, जी, बिल्कुल।
0: और मैं उनके साथ काम किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन शेयर किया है, उनसे क्या कुछ कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा?
0: एक तो हाँ, मुझे एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर, सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गया। उस दिन उनका सीन भी नहीं था, मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, मैं नया एक्टर हूँ मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि मैं जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में यही चल रहा था।
1: अच्छा।
0: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया। और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहां से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और उन्होंने से पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात, इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा।
1: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
0: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी,
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके
1: क्या बात।
0: एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एफटीआई की फिल्म है ये।
0: हाँ हाँ
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब
0: हर कोस पे भाषा।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बोली बदलती।
1: हाँ जी, और बज्जिका मेरी मातृभाषा है। मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
0: अच्छा,
1: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये एफटीआई की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था तो 15 दिन का एक गैप था। मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। क्योंकि एक आदत होती है ना कि आप ओटीटी के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो जहां पे बहुत सारी चीज ना, आपको होटल अच्छा मिलेगा ना, वैनिटी मिलेगी,
0: कोई एक अलग तरह का अनुभव।
1: हाँ जी, बट मैं एफटीआई इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूं उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि एफटीआई में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं, क्योंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर। तो मैं सोचा कि यहां पर भी राइटिंग करके यहां मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से।

0: बैठूंगा, वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि। तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया, और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी, ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है, अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी, हाँ जी,
1: उसके बारे में भी कुछ बताए। वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है। एक
0: बिल्कुल,
1: तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है, और
0: जी,
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्म इसलिए करता हूं ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है,
1: अच्छा,
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा।
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था, तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर। वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है, और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहां महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहां की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है,
1: अच्छा।
0: और मैं पीछे पीछे हूं, उनका कंधा थामे हूं कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहां पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी,
0: ये
1: हाँ जी,
0: कुछ अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है।
1: हाँ जी,
0: क्या अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना, तो मुझे लगा ये एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी, बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है। जैसे ही हमारा रैप अप होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है।
0: अच्छा।
1: इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था, बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूं जहां पे अपने पसंद का काम कर सकता हूं, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है,
0: अपनी पसंद रख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले?
1: बिल्कुल, ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीजों को जानना है, समझना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर में एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है,
0: सीरियस रोल।
1: हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कॉमेडी हो या बाकी चीजें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डी निरो और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं
0: जी।
1: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूं कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
0: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले, और हम उसमें भी आपको देखें।
1: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
0: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम

0: बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं दो तरह के होते हैं, कई बार प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहां पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास, क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है खुद से पूछना, दूसरे की बातों पर बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देखकर मत आइए। ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं। और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहाँ पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें क्योंकि आपने देखा नहीं, खुद को जाना समझा नहीं
0: जी,
1: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
0: बिल्कुल,
1: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो
0: जी।
1: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
0: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
1: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ।
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है। और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थी और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था
0: जी।
1: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरुद के पेड़ पे अपने ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरुद वही नमक लेके खाता रहता था।
0: क्या बात
1: है ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।

0: बिल्कुल, हमेशा साथ ही बनकर।
1: बिल्कुल,
0: क्या बात है।
1: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
0: क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।

ये थी जानी मानी अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।

0: मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।
1: प्री वेडिंग नहीं होता था हमारे टाइम में, हल्दी कार्निवल
0: अभी कहां से आ गया बीच में।

पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा, सफाई से पहले कार्यों की सूची बनाए इस विषय पर चर्चा, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जीत का रखे ध्यान इस विषय पर अध्यापिका महात्मा गांधी स्कूल हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा से बातचीत शुची जोशी से, साथ ही सुनेंगे गीत। 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ा आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो से 6:15 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से 6:30 से 7 तक हमारे जयपुर केंद्र से। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा किसान वाणी हमारे जयपुर केंद्र से 7:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम समाचार संध्या, आप सुन सकते हैं 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 10:00 का समय रहेगा फिल्म संगीत का और रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और एक नजर हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन हमारे जयपुर केंद्र से। यहीं से आप सुनेंगे वंदना 6:10 पर। हमारे स्टूडियो से रामचरितमानस गान आप सुन सकते हैं 6:30 पर। खेल तेरी बात का समय रहेगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 6:50 पर। यातायात का समय रहेगा 7:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर, सुबह 10:00 और दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक हमारे मुंबई केंद्र से।

कुछ देर से प्रोग्राम होगा कल सुबह 8:15 पर हमारे स्टूडियो से। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 8:45 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं 9:30 पर।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युवावाणी कल शाम 5:05 पर। इसके अंतर्गत युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा बातचीत और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे कल शाम 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केन्द्र से। हिन्दी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे शाम 6:30 से 7 बजे तक हमारे जयपुर केन्द्र से।

दैनिक अनुपात का समय रहेगा शाम 7 बजे। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, बातचीत और गीत। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से आप सुनेंगे 7:30 पर हमारे जयपुर केन्द्र से। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं दिल्ली केन्द्र से 8:45 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हिन्दी में समाचार आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केन्द्र से रात 11 बजे। ये तो था कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर 5:05 हुए हैं। प्रसिद्ध कार्यक्रम मेरे लोग

0: नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, नारी से रोशन है सारा जहां। होश होश से हर मुश्किल हराती है, नारी हर रूप में मिसाल बन जाती है। इन्हीं बनते हुए साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का, तो कीजिए स्वीकार आपकी दोस्त प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। बिना आजकल सभी में होड़ लगी है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के, पहनावे और दिखावटी चीजों को लेकर सभी में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है जो सीधे तौर पे हमारी जेब को प्रभावित करती है। तो मित्रों, हमारी आज की बातचीत का विषय है प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जेब का रखे ख्याल, और इस विषय पर बात की है सुचि जोशी से, जो कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हाउसिंग बोर्ड में अध्यापिका है। तो आइए सुनते हैं बातचीत।
1: आज की जिंदगी में प्रतिस्पर्धा केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं, अब तो हमारे पहनावे, घर की सजावट, बच्चों की पढ़ाई, घूमने फिरने और यहाँ तक कि हमारी जीवन शैली में भी एक तरह की प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने इस होड़ को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जरूरी है कि हम दूसरों की देखा देखी खर्च करने के बजाय अपनी जेब और जरूरतों का भी ख्याल रखें। प्रतिस्पर्धा के दौड़ में जेब का रखे ख्याल, इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुचि जोशी, जो कि वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हाउसिंग बोर्ड में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। नमस्कार सुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते प्रीति जी।
1: सुचि जी, जैसा कि हमारा विषय है तो सबसे पहले आप यह बताइए कि प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ का हमारी जेब पर सबसे ज्यादा असर किस तरह पड़ता है।
2: प्रीति जी, प्रतिस्पर्धा शब्द का अर्थ प्रतियोगिता अथवा खुद को बेहतर साबित करना होता है, और अगर हमें जेब के क्षेत्र में प्रतियोगिता करनी है तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा धन खर्च करना है, इससे हम ज्यादा श्रेष्ठ साबित हो, हमें अपनी जेब मोटी दिखानी होगी। और यही तो आजकल हो रहा है कि हमारी जेब कैसी भी हो, चाहे मोटी हो या न हो, हम कहीं से भी कैसे भी अरेंज करके और अपने आपको अपने समाज में श्रेष्ठ साबित करने के लिए दिखावा करते हैं, और यही हमारी प्रतिस्पर्धा का मूल कारण है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए अपने खर्च और परिवार के बजट को व्यवस्थित रखने का आसान तरीका क्या हो सकता है।
2: हमारे बजट को अगर हमें नियंत्रित रखना है, कम करना है, व्यवस्थित करना है, तो सबसे मुख्य तरीका यही है कि हम कम से कम दिखावा करें और अधिक से अधिक किसी भी चीज का उपयोग करें। मैंने सुना है, मेरी दादी नानी कहा करती थी कि मांस खाओ पर गले हड्डी मत बांधो। इसका मतलब ये है कि हमें जो करना है वो हम करें, लेकिन उसका दिखावा ना करें। और दिखावे करने में ही हमारी अधिकतर एनर्जी चली जाती है, हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर लेते हैं और तब हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम इसे हमारी जेब के संदर्भ में लें, हम हमारे

0: बजट के संदर्भ में लें तो आप देखिए कि दिखावा करने में आधे से अधिक हमारा बजट खत्म हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं आजकल, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि को पहनने में भी दिखावा करना है, घूमने में भी दिखावा करना है, आवश्यकता है कि नहीं पर हमें वो काम करना है। तो बस एकमात्र उपाय यही है कि हम दिखावा कम करें और अपने बजट को संतुलित करें।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बात करें हम सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया और विज्ञापन हमारी खरीदारी की आदतों को कितना प्रभावित करते हैं?
0: बहुत ज्यादा प्रीति जी। कई बार आपने भी सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो जो दिखा और बिका उसमें हम कंज्यूमर्स पर कितनी मार पड़ती है वो जानते हैं। अननेसेसरी चीजें लानी पड़ती है। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में हमारे लिए एक ड्रेस तब आता था जब हमारा पुराना ड्रेस फट जाता था। हमको एक ड्रेस धोना होता था और एक पहनना होता था। कहीं जरूरी नहीं था कि दिवाली पर हर बच्चे के लिए ड्रेस आएगी, कहीं जरूरी नहीं था कि बर्थडे पे ड्रेस आएगी, कुछ भी जरूरी नहीं होता था। अब इसकी ड्रेस कम हो गई है, एक आध ड्रेस फट गई है तो नहीं लानी है। और हम सभी वैसे थे, हम सभी में कोई अंतर नहीं था कि आपके मम्मी पापा की कौन सी नौकरी है, आप जॉइंट फैमिली में हो, आप सिंगल में हो, सबका यही रिवाज था कि ड्रेस तभी आती थी, किसी के पास दो होती थी, किसी के पास तीन होती थी बस। पर ऐसा कभी नहीं होता था कि सब अपना अपना कबर्ड होता था। और आज की क्या हाल है हम देख रहे हैं, हमको ड्रेस तो नहीं चाहिए ही चाहिए, उसके साथ मैचिंग की हर चीज चाहिए, शूज भी उसके साथ मैचिंग की होनी चाहिए। और हद तो तब हो गई कि दुपट्टा अगर आपके पास में एक है व्हाइट कलर का तो वो दूसरी पे नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी का शेड अलग है। अभी ये शेड टेंस ऐसे नए शब्द हम पता नहीं कहां से लेकर आए, और हमने सोशल मीडिया को अपना रियल लाइफ समझ लिया, रियल लाइफ को रियल लाइफ समझ लिया, और हम सब भी वैसे हो गए। जबकि हकीकत ये है कि वो तो प्रमोशन करते हैं, उनको तो उसका पैसा मिलता है, और हम अपना पैसा डालकर मूर्ख बनते हैं और अपने बजट को आउट करते हैं। तो सोशल मीडिया तो बहुत बहुत रोल निभा रहा है। और एक चीज और आपने देखी होगी कि आजकल छोटे छोटे बच्चे तक भी मांग करते हैं कि ये ड्रेस पहनना है, ये खाना है, वो भी सोशल मीडिया की देन है। तो हमको मध्यम वर्गीय लोगों को तो जरूरत है कि हम अपने आप को नियंत्रित करें, अपने बजट को नियंत्रित करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अब आप ये बताइए कि बच्चों की पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा के कारण माता पिता पर अतिरिक्त खर्च का दबाव भी रहता है, ऐसे में वो क्या करें?
0: हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो तो देखकर ही सीखते हैं। पहले सारे दोस्त एक जैसे थे, फिर वही बात कहूंगी मैं, और अब सारे दोस्त वैसे ही हैं कि उन्होंने एक ने वो शू लिया तो दूसरे को भी लेना है, एक ने ये पेन लिया तो हम सबके पास पहले एक ही पेन हुआ करता था, एक जैसे ही पेन हुआ करते थे, पर आज सबको वैसा ही लेना है जैसा उसके दोस्त के पास है। तो यहाँ पे माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्हें अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस भरना होगा सबसे पहले तो, और उनको बचपन से ही ये सिखाना होगा कि जरूरी नहीं कि जो सामने वाले के पास है वो मेरे पास में आए ही आए, उसकी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, उसके मम्मी पापा अलग है, मेरे मम्मी पापा लगे। तो दिखावा कम करने की या नहीं करने की आदत बच्चों में बचपन से ही डालना जरूरी है। और एक लाइन तो हमें कहीं ना कहीं खींचनी ही होती है कि हमको इतना ही खर्च करना है, जितनी हमारी आय है हमें उतने ही पैर फैलाने हैं जितनी हमारी चादर है। तो ये तो हमें करना ही है, तो क्यों ना हम बच्चों को बचपन से ही इस चीज के लिए तैयार करें कि बेटा जो हमारे घर का रिवाज है, जो हमारे घर का हैसियत है, उसके अनुसार चलेंगे। तो वो इस हिसाब से बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे और वो जिद नहीं करेंगे। और इसके लिए माता पिता को भी एक मौका मिलेगा कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी दूसरी जिम्मेदारियों पे ढंग से खर्च कर पाएंगे, नहीं तो ये बेकार के खर्चों में इतना उलझ जाएंगे कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और वहां पे फिर उनको सीमा बांधनी पड़ेगी। तो बच्चों को बचपन से सिखाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सारी आदतें हमें बचपन से ही डालनी होगी। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे त्योहार, शादी ब्याह और सामाजिक आयोजनों में दिखावे का दबाव काफी बढ़ जाता है, इस स्थिति में बजट कैसे संभालें?
0: फिर वही बात है, मुझे रह रहे कि वो हमारा आपका जमाना याद आता है कि हमारी शादियां भी हुई, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, हमने उन पलों को जिया, लेकिन आज हम उन पलों को सोशल मीडिया के हवाले कर रहे हैं। हमें वो यादें बनानी है जो नेट पे रहेंगी, हमारी पर्सनल लाइफ में कितनी हमारे दिमाग में रहेंगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन आजकल ये हो गया। अभी हमारे टाइम में प्री वेडिंग नहीं होता था, हमारे टाइम में हल्दी कार्निवल, अब ये कार्निवल शब्द कहाँ से आया और कैसे चलन में इतना ज्यादा है। फिर आप देखिए कि विवाह हो जाएगा, फिर उसके बाद में बेबी शावर, फिर उसके बाद में जब आप बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाएंगे तो उसका एक अलग फंक्शन, फिर बच्चे की हर महीने की बर्थडे सेलिब्रेट करना, फिर हर त्योहार पे संक्रांति पे वो पतंग उड़ा रहा है, भले बच्चा महीने का है या दो महीने का है पर उसके आसपास इतनी पतंगे हैं, फिर वो होली मना रहा है, फिर वो महादेव बनाए, फिर वो कृष्ण बनाए, राम जाने इतनी सारी चीजें।

0: वो बच्चा कप कप कर लेता है। अच्छा ये सारी चीजें जो बेबी शावर और हल्दी और ये सब हमारे टाइम में भी हुई थी, हम भी करते थे, मतलब हमारे रिवाज थे ये, पर इन्होंने तो रूप ही बदल लिया है और हमारे खर्चे बढ़ा लिए हैं। हमारे बचपन में तो बर्थडे भी हमको नहीं पता था कि कब होता था, सिर्फ पकौड़े बनते थे घर में क्योंकि तेल जलाना है और मिठाई एक हलवा बन गया या फिर लपसी बन गई। पर आजकल के बर्थडे, एक बर्थडे 10,000, 15,000, 20,000 का पड़ता है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी, तो ये खर्चे हमने बढ़ाएंगे, तो अब हमको ही इसको नियंत्रित करना होगा और ऐसे नियंत्रित करना होगा कि हम बड़े ही ये समझे कि जब मेरे बड़े बच्चे का ड्रेस पड़ा है, जब उसको कृष्ण बनाया था, तो या तो वो मेरे छोटे बच्चे के काम आ जाए या वो मेरे भाई के बच्चे के काम आ जाए, भाई को भी बुरा ना लगे और मुझे भी बुरा ना लगे। ये जो पहले जो हम फीलिंग पे चलते थे ना, अधिकतम यूज की, उस पे हमको फिर से चलना होगा, क्योंकि जमाना ऐसा है कि भाई मैंने आज एक ड्रेस पहनी और अपना फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, तो वो ड्रेस मैं तो दूसरी बार नहीं पहनूंगी क्योंकि फोटो चला गया है, लेकिन मेरी छोटी बहन भी नहीं पहनेगी क्योंकि बहन ने फोटो अपलोड कर दिया है। क्यों नहीं पहन सकते? वही हम लोग, वही लोग हैं जिन्होंने बहुत नियंत्रण से और बहुत अपने आप को कंट्रोल करके और चलाया है अब तक जीवन, तो हमको ऐसा अपना माइंडसेट बदलना होगा, बाकी और किसी का रोल नहीं है। कि हमको अपने बजट के अनुसार चलना है तो अपने माइंडसेट के अनुसार चलना पड़ेगा, माइंडसेट को संभालना होगा।
1: ये तो आपने बिल्कुल सच ही कहा है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड या बाद में भुगतान करें जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ, क्रेडिट कार्ड और ये जो चीजें हैं ना कि आपको भुगतान बाद में पर भुगतना तो आपको ही है, और ब्याज और ये तो अतिरिक्त धन जितना भी लगेगा वो सब आपका, और फ्री तो कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट नहीं बनना है। पर जहां आपको अधिकतम लाभ लग रहा है और बहुत जरूरी है, तब आप इन चीजों का यूज करिए, लेकिन उसके साथ में ही टेक्निकल सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ टेक्निकल सिक्योरिटी के साथ ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी फाइनेंशियल सीमाएं कितनी है, उसको लांघना किसी भी हालत में उचित नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा कि सीमाएं तो बनानी ही पड़ेगी। अब बात करें कि जैसे कई बार अचानक खर्च आ जाते हैं, तो अचानक आने वाले खर्चों से बचने के लिए क्या वित्तीय तैयारी हमें रखनी चाहिए?
0: आपको याद है हमारे बचपन में हम सब बच्चों का एक अलग अलग गुल्लक हुआ करता था मिट्टी का, तो वो थियोरी हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी और इस पूरी पीढ़ी को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक थियोरी है गुल्लक वाली, जिसको आजकल हम पिगी बैंक कहने लगे हैं बच्चे। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि बच्चा स्कूल से आया और वो पानी नल का टपक रहा था, तो पानी नहीं था उसके घर में, तो वो प्यास के मारे चिल्लाने लगा, तो माँ ने कहा मुझे बुखार आ रहा है, तो ढूंढ ले कहीं पानी होगा, नहीं तो नल में देख ले। नल में बूंद बूंद करके पानी आ रहा था और वो सब चूंकि ढूंढा, बहुत परेशान हुआ, और घंटे भर बाद उसको जो पानी मिला, तब माँ ने उसे कहा भैया अच्छा लग रहा है ना बेटा, तो इसी तरह से अगर बूंद बूंद करके तू पैसा बचाएगा एक एक करके, तो वो तुझे बाद में फल देगा। तो ये चीज हमें, ये कहानी बच्चों को सुनानी चाहिए और सिखानी चाहिए कि ये पिगी बैंक एक एक रुपया रोज जमा कर रहा है, लेकिन ये बाद में बहुत फलदायी है, और इस तरह से बच्चों में बचत करने की आदत पड़ेगी, और आप भी अगर ये बचत करेंगे तो आपको आने वाली अचानक मुसीबत के लिए और किसी भी खर्चे के लिए मदद करेगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब शुचि जी, अंत में श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रीति जी, एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम पुराने युग में पुराने तरीके से पुराने बनके नहीं जी सकते, हमें करना तो वो पड़ेगा ही जो हम इस युग में जी रहे हैं उसके अनुसार, लेकिन एक मध्यम मार्ग बनाया जाना बहुत जरूरी है, जिसमें गुल्लक होना चाहिए ताकि हम निर्धारित कर सकें कि इस वर्ष में हमें ये ही खर्चे करने हैं और इतने ही धन में करने हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें ये करना है कि हम हमारी पीढ़ी को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, वो ये सोच ले कि अगर मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं तो मैं इन्फीरियर नहीं फील कर रहा हूं। मतलब बच्चे को इन्फीरियर फील नहीं होना चाहिए कि अगर वो दिखावा नहीं कर रहा है या वो फैशन नहीं कर रहा है, तो उसको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह कि कोई ऐसा बड़ा खर्च कभी न करे जो वो पूरा न कर सके। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखें, गुल्लक बनाएं, मेंटली स्ट्रांग बनाएं और खर्चा अपनी सीमा में करें, तो निश्चित तौर से हम किसी भी बाधा को पार कर पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा शुचि जी आपने। तो बहनों, आज की विशेष वार्ता से हमें यही सीख मिलती है कि आर्थिक समझदारी केवल पैसे बचाने का नाम नहीं, बल्कि पैसे को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करने की भी कला है। शुचि जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और इसमें भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रीति जी, और आपका आभार कि आपने मुझे इस वार्ता के लिए उपयुक्त समझा।
2: बोलो, अभी आप सुन रहे थे बातचीत।

0: शुचि जोशी से। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं प्यारा सा गीत और संदेश।
1: नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा,
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तो शुरू करे इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीक LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
3: फिर से स्वागत है बिना आपका कार्यक्रम में। पहले हर वर्ष 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा और आग जैसी आपदाएं कभी भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जागरूकतापूर्व तैयारी और समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार को सुरक्षित रखने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक निर्णय लेने में महिलाएं अहम योगदान दे सकती है। महिलाओं को आपदा से बचाव के प्रशिक्षण निर्णय प्रक्रिया में समानुसार देना भी आवश्यक है। आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे बचा जा सकता है और नुकसान को हम कर सकते हैं। अब अगली बात कर रहे हैं, सफाई से पहले कामों की सूची बनाना। जी हाँ दोनों, सफाई तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन दिवाली का त्योहार आते ही ये हमारा काम दुगुना हो जाता है। तो इसलिए काम हमारा बढ़े ना, इसके लिए हमें सफाई करने से पहले एक सूची जरूर बनानी चाहिए। उसके अनुसार काम करने से हमारे काम में समय की बर्बादी कम होगी।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये धुंद फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है रिफ्यूजी फिल्म का गाना, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनू निगम की आवाज में समीर का लिखा हुआ ये गाना अनु मलिक का संगीत, फिल्म सोल्जर।

तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गाना, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम है राजा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। श्रीमान सत्यवादी, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में। इस गीत

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।

0: चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रूपये से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोट मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस्की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने। वारिस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में, वर्मा मलिक का लिखा हुआ गाना, संगीत है उत्तम जगदीश का।

अनजान का लिखा और आरडी बर्मन का संगीत बद्ध किया, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम जमीन आसमान।

0: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में।
1: प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो शुरुआत में आनंद का साधन लगती है, वही धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी जंजीर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शराब की लत की। शराब पहले इंसान को नहीं पकड़ती, इंसान शराब को पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही शराब इंसान के जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और भविष्य को पकड़ लेती है। एक गिलास से शुरू हुई कहानी कभी कभी एक टूटे हुए परिवार पर खत्म होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपनी समस्या को स्वीकार करता है और सही सहायता की ओर कदम बढ़ाता है। दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो शराब की लत से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो शराब के आदी हो गए हैं? यदि ऐसे लोगों को अपने आसपास में ढूंढा जाए तो शराब की लत से जूझ रहे या शराब के आदी हो गए लोगों को ढूंढ पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। शराब की लत आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति बार बार शराब का सेवन करता है और धीरे धीरे शराब उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, तो वह अपनी इच्छा और नियंत्रण को खोने लगता है। इसका प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक जीवन, सामाजिक संबंधों और आत्मिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कैसे एक व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है? जी हाँ श्रोताओं, इन सभी पहलुओं पर हम विचार करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और शराब की लत से कैसे छुटकारा पाए इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने परिवार के साथ आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
2: 9414066730। जी हाँ, 9414066730।
0: और हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001।
1: आज का कार्यक्रम शराब की लत से कैसे छुटकारा पाए इसके विषय में चर्चा करेंगे।
3: एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। रमेश एक कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन दफ्तर के दोस्तों के दबाव में रमेश ने पहली बार थोड़ी सी शराब चखी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन दोस्तों की देखा देखी उसने इसे शान की बात मान लिया। धीरे धीरे कभी कभी की जाने वाली यह पार्टी हर हफ्ते की आदत बन गई। हर दिन पूरे मन से रमेश पास की शराब की दुकान पर जाता था, चाहे सुबह का समय हो या शाम का, या दुकान बंद होने का समय हो। रमेश हमेशा उसी दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता रहता था। उसके मन में बस एक ही विचार बार बार घूमता रहता था, हे भगवान काश दुकान बंद हो। लेकिन फिर दुकान खुलते ही चमकती बोतल उसे अपनी ओर खींच लेती। कुछ ही मिनटों में एक प्लास्टिक की थैली में बोतल लिए रमेश वहाँ से निकल आता। कभी खरीदारी से खुश होता तो कभी खुद को कोसता।
4: दरवाजा खोलो।
1: अरे रमेश, तुझे क्या हुआ? तू तो पहचानने में भी नहीं आ रहा। ये क्या हाल बना रखा है भाई, तू तो बहुत कमजोर हो गया है।
4: हाँ भाई कमल, थोड़ा बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और तू सुना, तू कैसा है?
1: और तेरी नौकरी कैसी चल रही है? पिछली बार तो तूने बताया था कि तेरी प्रमोशन हो गई है और तनख्वाह भी डबल हो गई है।
4: क्या बताऊं भाई, शराब के कारण नौकरी भी चली गई और बच्चे का नाम भी स्कूल से कट गया, बीमार और हो गया।
1: यार जितना मैं तुझे जानता हूँ, तू तो शराब, सिगरेट, पान, तंबाकू जैसी चीजों को हाथ भी नहीं।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: लगाते था।
1: हाँ भाई कमल, था तो ऐसा ही, लेकिन दोस्तों की संगति के कारण एक दो बार शराब पी फिर लत लग गई। अब शराब छोड़ना चाहता हूँ ताकि सब ठीक हो जाए।
0: भाई अपना ख्याल रख, और मैं तो चाहूंगा कि तू जल्दी ठीक हो जाए।

0: इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इनको बचाना मुश्किल होगा।
1: कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इन्हें बचाने की कोशिश कीजिए।
0: देखिए, हमने अपनी ओर से सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अब स्थिति हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते।
2: सुनीता मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने केवल शौक के लिए शराब पीना शुरू किया। अब मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर देना, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और शराब छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देता।

श्रोताओं, शराब की लत अचानक नहीं लगती। कई बार व्यक्ति मजे में या फिर तनाव में आकर या फिर दोस्तों के साथ बैठकर या परिवार के वातावरण में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में परेशान होकर शराब पीना शुरू कर देता है। शराब में उसे लगता है कि वह जब चाहे शराब छोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका ये सेवन आदत और फिर निर्भरता में बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति के शराबी होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के शराब का आदि होने का एक बड़ा कारण उसका वातावरण भी हो सकता है, परिवार, समाज या वो स्थान जहां वह रहता है, और बुरी संगति उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। जो बच्चे शराब पीने वाले परिवारों में बड़े होते हैं, उनमें ये डर हो सकता है कि वे भी अपने माता पिता जैसे बन जाएंगे। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पिता शराब पीते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह संस्कृति और समाज का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। कुछ संस्कृतियों या समाजों में शराब पीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और इसे बहुत सामान्य रूप से देखा भी जाता है। इससे विशेषकर युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और बाद में वे इसके आदी बन जाते हैं। कई बार वर्तमान में तनाव के कारण व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है। बहुत से लोग किशोरावस्था में शराब पीना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में व्यक्ति के जीवन में चिंताएं, डर, अपराध, निराशा और कई अन्य समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी परिवार में तनाव होने के कारण भी व्यक्ति शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में वह शराब को तनाव से बचने या खुशी पाने का एक साधन समझ लेता है। कई बार टेलीविजन और फिल्मों में भी लोग ये देखते हैं कि कुछ पात्र शराब पीकर अपना तनाव कम करते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को शराब पीते हुए आनंद लेते देखता है तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इसी प्रकार मानसिक तनाव के कारण विशेषकर कुछ युवा खुशी पाने या तनाव से राहत पाने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वे उसे केवल आराम या तनाव कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके आदि हो जाते हैं और उनका जीवन प्रभावित होने लगता है। लेकिन ये शराब की लत कैसे छूट सकती है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी बहुत से लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के शराब छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अचानक शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे कमजोरी, अधिक पसीना आना, घबराहट, बेचैनी और निराशा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में शराब छोड़ना गंभीर और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को उसे बता सके और वो उसका इलाज सही तरीके से कर सके। कई बार जब शराब का आदि व्यक्ति घर पर शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ दिनों तक अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वो फिर उसी वातावरण में जाता है

0: पुराने दोस्तों से मिलता है तो उसे दोबारा शराब पीने की इच्छा हो सकती है। पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, उस स्थान पर ऐसे लोग एक साथ रहते हैं जो शराब छोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसमें वह एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहाँ प्रशिक्षित काउंसलर भी होते हैं जो उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। शराब छोड़ना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। लंबे समय से अधिक मात्रा में शराब पीने वाले व्यक्ति को अचानक शराब बंद करने पर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और ऐसे समय में उन्हें पुनर्वास केंद्र जाकर अपना इलाज कराना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग तनाव, अकेलापन या जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण शराब का सहारा लेने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसे केवल डांटना या उससे दूरी बनाना पर्याप्त नहीं है, हमें उसके करीब जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और भावनात्मक सहायता देनी चाहिए। हर क्षेत्र में लोगों को शराब और नशीले पदार्थों के प्रभाव और उनके नुकसान के बारे में उचित शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग शराब के वास्तविक प्रभावों को जाने बिना इसे पीना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसके लिए भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही उसे यह भी जानना चाहिए कि शराब की निर्भरता से बाहर आने के लिए कहां से सहायता प्राप्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों से उसे बचना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, एक बहुत पुरानी कहावत है और इस कहावत में कहा गया है कि शराब ठट्टा करने वाली और हुल्लड़ मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण भटक जाता है वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। शराब व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति शराब के कारण अपने विवेक और नियंत्रण को खो देता है वह व्यक्ति बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहा। कई बार शराब पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो शराब को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असल में जब शराब उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने लग जाती है तब वह उसके जीवन की आदत नहीं बल्कि वो उसके जीवन की जंजीर बन जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब जिस चीज को हम नियंत्रण करने की सोचते हैं वही हमें धीरे धीरे नियंत्रित करने लगती है। पेश होता हो इसके कई बुरे परिणाम होते हैं। दुख, झगड़ा, शिकायत, चोट, गलत निर्णय, शराब की लालसा, शराब को छोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होना, ये तमाम चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोग शराब पीने के लिए चोरी करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, घर से पैसा चुराने लगते हैं। ये तमाम चीजें उनकी डिग्निटी यानी कि उनके गौरव पर भी प्रभाव डालती है और साथ ही साथ समाज में उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हर व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए। परिवार में उसे आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि बच्चे भी उसके जीवन को देखकर प्रभावित हों और उसके जैसे बनने का प्रयास करें जो अच्छे काम अपने जीवन में करता है। पेश होता हो, शराब की लत छोड़ी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना जरूरी होता है। जब आप अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आपको इस काम को नहीं करना तो अवश्य ही आप उस पर विजय पा सकते हैं और आप शराब जैसी बड़ी लत जो लोगों के जीवन और उनके परिवारों को बर्बाद करती है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9414066730। जी हाँ, 9414066730। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बिड़िया सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी 500 का नया चैनल है। 6:30 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। हमारे

0: जयपुर के आंध्र से यहीं से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा, दूसरे चरण की लोक सूचना जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपनी शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है।

0: की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: भारत ने बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के तटीय समीपवर्ती देशों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग संगठन है। नई दिल्ली में संगठन के गृह मंत्रियों की आज पहली बैठक हुई। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने सभी सदस्य देशों से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सहयोग का आह्वान किया। श्री शाह ने कहा कि मानव तस्करी भी मानवाधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। श्री मुरुगन लंबे समय से केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और एडीजी क्राइम तथा जयपुर पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। पीएम गति शक्ति योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 5 सालों में इस महत्वाकांक्षी योजना ने देश में बुनियादी विकास को नई गति और दिशा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से बेहतर प्लानिंग, समन्वित दृष्टिकोण और आधुनिक कनेक्टिविटी के जरिए यात्राएं आसान हुई हैं। उद्योग, व्यापार और रोजगार के लिए नए रास्ते खुले हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में

0: सोलह आरएएस अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए हैं। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हालांकि प्रमोशन के बाद फिलहाल ये सभी अधिकारी मौजूदा पदों पर ही काम करेंगे। इनमें आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी और मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव अंजू राजपाल शामिल है। पिछले दिनों जयपुर में हुई यूपीएससी की बैठक में इनके नाम प्रस्तावित किए गए थे। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन रहा। कल नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी और परसों दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन होगा। इस चरण में 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होगा। इसके लिए 22 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच दूसरे चरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से आज लोक सूचना जारी की गई। इसके लिए 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों की महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्कूली शिक्षा में समग्र शिक्षा, जादुई पिटारा, निष्ठा, विद्या समीक्षा के केंद्र और डिजिटल शिक्षा सहित अन्य शुरुआत की गई है। वहीं उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क सहित अन्य कदम उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारें यूजीसी, एआईसीटीई, एनटीसीई, एनसीईआरटी और सीबीएसई के साथ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। एनईपी में स्कूली शिक्षा में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। दीक्षा और पीएम ई विद्या के जरिए डिजिटल शिक्षा तक पहुँच बढ़ाई जा रही है। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। वहीं भारत भाषा पुस्तक योजना के तहत 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्रारूप में शैक्षिक सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक विशेषज्ञों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों और कौशल क्षेत्रों की जानकारी दी जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 125 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों में 800 से ज्यादा ऑनलाइन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एनईपी 2020 ने रोजगार क्षमता, उद्यमिता और कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी।
0: राज्य में अगले 2-3 दिन कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल और परसों 16 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश में तापमान में गिरावट आ रही है। 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे रात और सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दिन के समय अधिकतर स्थानों पर अभी गर्मी का असर बना हुआ है। फिलहाल दिन और रात के तापमान में काफी अंतर मापा जा रहा है। इस बीच प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इसके असर से आंधी बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दौसा जिले की ऐतिहासिक चांद बावड़ी पर 2 दिन के आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कल से शुरू हुए इस उत्सव में लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। देशी विदेशी पर्यटकों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कच्ची घोड़ी, भपंग और बहरूपिया सहित अन्य पारंपरिक वाद्य वादन और नृत्यों का आनंद ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है। दुनिया भर में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य है। ये दिन सुरक्षित आवास, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और सामूहिक प्रयासों पर जोर देता है। साथ ही ये दिन आपदा राहत योजना के विषय को उजागर करने का भी अवसर प्रदान करता है। ITDRR के लिए इस वर्ष की थीम लचीलापन घर से शुरू होता है रखी गई है। इसका अर्थ है घर ही वह प्राथमिक

0: स्थान है जहां आपदाओं का प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया जाता है। इस दिन घर घर आपातकालीन तैयारी के लिए जरूरी उपायों के बारे में भी बताया जाता है। इसी कड़ी में जैसलमेर और श्रीगंगानगर में युवाओं को विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए व्यवहारिक तरीकों की जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा बैठक की। प्रदेश में 16 आरएएस अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए और राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा, दूसरे चरण की लोक सूचना जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है जसवंत सिंह डूडी ने। पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बाड़मेर जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सियासी हलचल के जोर पकड़ने से चुनावी रंग जमने लगा है। बाड़मेर जिले में जिला परिषद के 37 वार्डों, 17 पंचायत समितियों और 625 ग्राम पंचायतों में पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 10 पंचायत समितियों बायतू, आड़ेल, मांगता, गडरा रोड, रामसर, चौहटन, लीलसर, धनाऊ, सेड़वा और फागलिया में 22 और 24 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 7 पंचायत समितियों शिव, भियाड़, बाटाड़ू, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, डूंगेरों का तला और बिशाला में इस महीने की 28 और 30 तारीख को सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती अगले महीने की 20 तारीख को सुबह 8 बजे से की जाएगी। जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर और उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर को होगा। इसी तरह प्रधान का चुनाव अगले महीने की 27 और उप प्रधान का 28 तारीख को होगा। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल और जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने चौहटन और रामसर उपखंड में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के अलावा सभी मतदाताओं के लिए सुगम और समावेशी मतदान के बंदोबस्त करने की बात कही। पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। बाड़मेर के प्रभारी सचिव रोहित गुप्ता ने पिछले दिनों जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर और बायतू में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष शिविरों का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। बीते दिनों बाड़मेर में आत्मा सभागार में किसान संवाद और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जिले के किसानों को उन्नत खेती और आधुनिक पशुपालन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में जिले के कई प्रगतिशील किसान शामिल हुए। बाड़मेर में भगवान महावीर टाउन हॉल में बीते दिनों मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नव चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद का जिला स्तरीय कार्यक्रम भी टाउन हॉल में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विभागों के अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर मुख्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम विषय पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीएसएफ के आला अधिकारी और जवान मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर बाड़मेर में अहिंसा चौराहे पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिले में शतायु मतदाताओं के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बाड़मेर में सरकारी जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के अवसर पर जिले में घर घर

0: स्थापना की गई है। इन दिनों देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की जा रही है। बाड़मेर शहर स्थित गढ़ मंदिर सहित जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में मनमोहक सजावट की गई है। दूसरी तरफ चौहटन इलाके में वांकल धाम वीरात्रा में नवरात्र महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इन दिनों शहरों के अलावा कस्बों और गांवों में भी गरबा पंडाल सजाए गए हैं, जहां डांडिया की धूम है। वहीं बाड़मेर के हाई स्कूल मैदान में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बाड़मेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, सरकार राज रा नजरिया और काम रा तरीका माए पावर टू एम्पावर रो सिद्धांत अपनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लेवन सारू अहलकारा साग मीटिंग की नी। प्रदेश रा 16 आरएएस अहलकारा री आईएएस माए तरक्की भी। और राज्य माए पंचायत चुनाव रा पहला दौर माए पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भियो। दूजा दौर री लोक सूचना जारी। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकार राज रा नजरिया और काम करन रा तरीका माए पावर टू एम्पावर रा सिद्धांत ने अपनायो है। वे आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम री मीटिंग में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि भारत री बरकत भेड़ा विकास और मौका माथे टिक्योड़ी है। वे कहो कि ताकत केवल आगे बढ़वा रो बूतो नहीं है, बल्कि आ दूजा ने मजबूत बनावन रो बूतो ही है। प्रधानमंत्री कहो कि डिजिटल ताकत भारत सारू नुआ मौका बनाया है। श्री मोदी कहो कि दुनियारी अनिश्चितता बीच भारत रो माली विकास मजबूत नींव माथे टिक्योड़ो है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना हो, क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: प्रधानमंत्री कहो कि भारत रो विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर भत्तो फेंक्यो है और बैंकिंग सिस्टम कई दशकारी सब मजबूत हालत में है। श्री मोदी कहो कि देश में लाडला 10 साल रे दौरान 25 करोड़ जना ने गरीबी बाहर निकाली चिया।
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: बंगाल री खाड़ी रा तटीय करीबी देशा रा खास अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग संगठन बिम्स्टेक रा गृह मंत्रिया री मीटिंग आज नई दिल्ली माई फी। इ मौके गृह मंत्री अमित शाह कहो के आ मीटिंग आतंकवाद, संगठित अपराध, नशीली चीजा तस्करी, गैर कानूनी तरीकाओं धन लावण ले जावण और साइबर खतरा रो सामो करण रा भेड़ा संकल्प ने बतावे है। वे सगला सदस्य देशाओं नशीली चीजा री तस्करी रे खिलाफ अभियान माए मदद देवन री अरज कीनी।
3: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस्तीफो दे दिनो है। वह राज्यसभा री सदस्यता हुई इस्तीफो दे दिनो। श्री मुरुगन ई बारे माय प्रधानमंत्री ने कागज लिखियो है। मध्य प्रदेश हूँ राज्यसभा सदस्य मुरुगन लंबा भगत हूँ केंद्र सरकार माय राज्य मंत्री रा तौर सेवा दे रहा। मुख्यमंत्री भजन

0: ताकि तापमान में उतार चढ़ाव रा आसार है। दौसारी ऐतिहासिक चांद बावड़ी माथे दो दिन रो आभानेरी फेस्टिवल मनायो जा रियो है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन री ओरों काल शुरू करी जिया इन उत्सव माए लोक कलाकार कच्छी घोड़ी भपंग और बहु रूपिया समेत न्यारा न्यारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रिया है। सलूम्बर जिला रा आदर्श गांव पिलादर माए आज आयुर्वेद विभाग री ओरों महिलावां सारू स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाईचियो। शिविर माए महिलावां री हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर समेत न्यारी न्यारी जांचा कर और आयुर्वेदिक दवाइयां मुफ्त दीरी जी। शिविर माए दवाई रा गुणा वाला पौधा रे बारा माए जानकारी दीरी जी। काल विश्व मानक दिवस रे मौके जयपुर माए मानक महोत्सव राख्यो जावेला। इन कार्यक्रम माए लोगा ने मानक उत्पादा और सेवाओं री जानकारी दी जावेला। भारतीय मानक ब्यूरो री जयपुर शाखा रा निदेशक आदित्य दास बतायो के उद्योगा स्कूल कॉलेजा सरकारी महकमा और ग्राहका ने मानकीकरण रा महत्व रे बारा माए जानकारी दी जावेला। ग्राहकां और कारोबारियां बीच यूपीआई रे जरिए 2,000 रुपये रकम रा लेन देन माथे यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर दिवाली पाछे लगाई जावेला। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए कानून सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीरी जी। इन बीच किणी दो जना बीच यूपीआई रे जरिए गैर कारोबारी लेन देन सारू कोई एमडीआर नी लगेला और करीब 96% यूपीआई लेन देन माथे इनरो कोई असर नी पड़ेला। यूपीआई क्यूआर कोड रे जरिए हर महीना 1,00,000 रुपया ताई खाता माई हासिल करन वाला नाना कारोबारिया और रेहड़ी पटरी वाला माथे कोई एमडीआर नी लगेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 25 अक्टूबर दीतवार ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 139वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही 23 अक्टूबर ताई मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे राय भेज सको हो। नंबर ओ जो सुन ले रहा हो सा 1800-11-7800। इसा गई नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एकर फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार राज रा नजरिया और काम रा तरीका माए पावर टू एम्पावर रो सिद्धांत अपनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश माए कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा 16 आरएएस अहलकारा री आईएएस माए तरक्की भी और राज्य माए पंचायत चुनाव रा पहला दौर माए पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भियो। दूजा दौर री लोक सूचना जारी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही दूरदर्शन के टीटीएच चैनल पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसानवाणी कार्यक्रम रे बाट अडिकता सगळ्या श्रोतावाने अदिति भट्टरो ने भर्यो नमस्कार, राम राम सा। सागरी दौलत जी आपने भी घणो घणो राम राम।
7: अदिति आपने और किसान भाई जो भी कार्यक्रम सुन रहा सबाने घणो घणो राम राम
6: जी। और रामा श्यामा के सागे सागे तीज त्योहार को उत्सव जो छे पर्व छे वो की शुरुआत होगी छे।
7: बिल्कुल, आज तीसरो नवरात्र है।
6: हाँ, और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करी जावे है, मान ध्याय और मनायो जावे है।
7: बिल्कुल, 9 दिन 9 स्वरूप माता का 9 स्वरूप है, वो रूप में आपा मनावा हा
6: जी।
7: आपा देखा कि आपा की परंपरा यार है कि आपा देवी के रूप में पहले सु ही पूजा करता आया। आज भले आपा महिला सशक्तिकरण की बात करा, लेकिन दुर्गा के रूप में हो चाहे दूसरी देवियां के रूप में, और बच्चिया ने भी आपा पूजन के तौर पे
6: जी सर
7: देखा, तो यह नवरात्र आपा के लिए संदेश है और धार्मिक भी महत्व है
6: जी। और घर घर के मायने कई सारा जना व्रत कर राखे होला, व्रती होला, और कई जगह तो आजकल देखो गरबा डांडिया को चलन भी है, तो वह भी आजकल चलन में है, तो माना अपनानो ही चाहे जे। लेकिन सागे ही फसल की बुवाई को यानी कि रबी की फसल की बुवाई को टेम भी अबार जिन्हें कहा गोल्डन पीरियड वो अबार चाल रहे है, तो इन्हें भी कर्चा भायर बना अपनावे और आगे पर्व ने मनाता हुआ व्रत ने राखता हुआ फसला की टेम सारू बुवाई भी करता चाले।
7: बिल्कुल, अबार की बात करा तो सरसों चना मटर मसूर यहाँ की बुवाई को समय है, तो किसाना ने सरसों की बुवाई है वो 25 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए पूरी, और एक सू ज्यादा अगर देरी हो तो फसल में कई तरह की बीमारियां कई तरह का रोग लागबा की संभावना रहे, या चेपा कीट है या पाड़ा को असर ज्यादा हो गए, इसको पैदावार भी घट सके हैं अगर बात सरसों की करा तो।
6: सागे ही अगर आप बात करा चना की तो सूखो या असिंचित क्षेत्र का मायने चना की बुवाई जो छे अबार जो टेम चाल रो छे ये टाइम पे आपने कर देनी चाहिए जी, और चना की हमेशा आप गहरी कतारा में बुवाई करा ताकि मिट्टी की गहराई में मौजूद जो नमी छे वाने चना को पौधो सोख सके, पूरी तरीका नमी वा को इस्तेमाल कर सके, और जो भी रोग छे वो पूरी तरीका खत्म हो सके, जी उखटा रोग छे उनसे खतरो कम हो जावलो चना को।
7: बिल्कुल, और बात करा रबी की बात कर रहा हो तो गेहूं जो की भी फसल है वो बुआई को समय तो खेत तैयार करवा को टेम है, पर मटर और मसूर की बात करा तो हरी मटर जो सब्जी वाली है
6: जी
7: और दाल वाली मटर है बुआई को जो समय है वो अभी तापमान है बिल्कुल अनुकूल है
6: जी। और जी हाँ, बात करा गेहूं और जौ के लिए खेत तैयार करवा की अगर बात करा तो अबार सामान्य बुवाई को टेम अब शुरू हो जावलो, तो ये टाइम पे अगर आपा ई बुवाई को स्वागत करा ई की तैयारी करा तो कोई दूसरी बात अतिशयोक्ति नहीं होवेली, जी हाँ पलेवो लगावा गेहूं बोवा से पहली खेत में पानी दियो जावे जिन्हे पलेबो लगावा कहवा, तो ये टेम जो छे पलेबो देवा को शुरू हो गयो छे, ये टेम पे आपने कर देनो चाहे जे।
7: कुल मिलार बात यह है कि खेतीबाड़ी कर रहा किसान है, हमारा अभी को सीजन है, जो भी काम करना है वो करना की जो टेम है बीसू पहली भी करना जो अबार कर रहा है वो आपने कर लेना जरूरी है। लेकिन सब महत्वपूर्ण बात आ है कि जो भी खेत के मायने आप बीज डालो बीजोपचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना भी कृषि विशेषज्ञ आवे वह ये कहे कि खेत में बीज जद ही डालो जब बीजोपचार वे
6: जी,
7: क्योंकि बीजोपचार के बाद में कई तरह की बीमारियां लागबा की जो संभावना है वे कम हो जावे, और स्वाभाविक है कि किसान यही सोचे कि आप जो भी बीज डाला खेत के मायने भी की उपज अच्छी मिले उसकी गुणवत्ता बढ़िया हो, तो बीजोपचार के बाद में आप कह सका कि आप बीज है वो अच्छी तरह से आप जमीन में चलियो गयो है, और कई के

0: दवाइयां भी रहे तो भी हिसाब सु कई रोग कीट लागबा की संभावना कम हो जावे। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई लाग जावे कट जावे तो आप कृषि विशेषज्ञ सु कह सका कि मैं बीजोपचार करियो, इस तरह की दवाई थी, इस तरह को बीज हो, तो बिको उपचार भी आपने टाइम पर हो सके।
1: जी सागर, पाटा लगाबो को टाइम भी है कि खेत में जरूर आपा पाटो लगा दिया जिससे कि माटी की जो नमी है वह उड़ेने और आपा के खेत में पूरी फसल वहां को इस्तेमाल कर सके। ओट लगावा की तैयारी भी आपा कर ले वहां की जुताई के लायक अगर आपनो खेत है तो इनमें कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर सू 2-3 बार चौकी तरीका जुताई करके आपने माटी की नमी ने बनाए रखो।
0: बिल्कुल, बीजोपचार की बात करें तो फंगिसाइड जिन की यानी कि अपना कवकनाशी कहवा बीजा ने थायरम कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज या जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करनो और फसला के जड़ गलन और उकटा रोग से बचावे है। राइजोबियम कल्चर की बात करा तो दाड़ा के लिए जहाँ चना मटर मसूर के बीजा ने राइजोबियम और पीएसबी यानी फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग और बैक्टीरिया कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इसु पौधा हवा से नाइट्रोजन और मिट्टी से फास्फोरस आसानी से सोख पावे।
1: जी सर, सागही आपा बुवाई का टाइम पे खाद प्रबंधन भी अगर आपा चोखी तरीका कर लेवा तो आपने आगे पोषक तत्व की खेत के मायने कमी नहीं होवेली। तो आपा बात करा कि बीज के सागे ही फेंका न आपा खाद न बल्कि सीड ड्रिल सू मशीन सू बीज सू 2-3 इंच नीचे डाला जिससे कि आपने चोखी उर्वरा शक्ति और जो पोषक तत्व जिन्हें मिलना चाहे जे माटी ने वह टेम सारू बुवाई का टेम मिल ही जावे।
0: सही बात है, कुल मिलार बात है कि बुवाई को समय है, रवि को सीजन है, तो किसान आपा का है जो भी आपा बात करी बी के साथ में सब्जियां और चारा की बुवाई भी बीको भी अबार अच्छो टाइम है। चाहे आलू की बुवाई हो, चाहे दूसरी सब्जियां की बात करा तो लहसुन की कड़िया लगाबो हो, प्याज की नर्सरी तैयार करबा हो, मूली गाजर सलजम और पालक की बुवाई को समय जो है टाइम वो भी अबार चाल जो है। हरा चारा जहाँ किसान भाई है जो ज्यादा पशु रखे डेयरी को काम करिए वो ज्यादा पशु रखे तो वहां को भी अबार टाइम है कि हरा चारा के लिए आप बुवाई है वो कर सको ताकि आपने आगामी समय में पशुओं के लिए चारा के लिए दिक्कत ना हुए।
1: जी सर, और जी हाँ, अभार को टेम है कि सुबह शाम की गुलाबी ठंडक देखबा में आ रही है तो दिन को तापमान धीरे धीरे भी अब थोड़ा सा दिना पाछे गिरबा लाग जावेलो। तो सर, रबी की फसला के अंकुरण के लिए एकदम जी ने कहा कि गोल्डन पीरियड जी मैं शुरुआत में ही कही कि वो टेम वो मौसम चल रहा है तो ई टाइम पे कृषि विज्ञान केंद्र से आपकी माटी की जांच करावा और उ आधार पे खाद को चयन करा और उनके पाछे आपनी जो रबी की फसला है उनकी बुवाई की तैयारी शुरू कर दिया।
0: बिल्कुल, तो यह बातचीत होगी, अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और नैनो टेक्नोलॉजी पौध रोपण प्रबंधन की आधुनिक और प्रभावी तकनीक की जानकारी दे रहा है श्री तेजपाल बाजिया। तो सुना
1: श्रोतो, कार्यक्रम चल रहा है किसान वाणी और आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तेजपाल बाजिया। आप SRF प्लांट पैथोलॉजी SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर जयपुर से आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत तेजपाल जी। राम राम। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी पौधरोपण प्रबंधन की आधुनिक एवं प्रभावी तकनीक पर। डॉक्टर साहब, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है आप ये बताएं।
2: नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे विस्तार से। नैनो टेक्नोलॉजी में किसान भाइयों खेती में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए केवल उन्नत बीज खाद एवं सिंचाई पर्याप्त नहीं है बल्कि फसलों को रोगों से भी सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस विषय में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नैनो टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसमें अत्यंत छोटे आकार के पदार्थों का निर्माण अध्ययन और उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 1 से 100 नैनोमीटर आकार के पदार्थों को नैनो पदार्थ कहा जाता है। आप यूं समझिए कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। किसान भाइयों, इतने छोटे प्रकार का पदार्थ के कुछ भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण बदल सकते हैं, इसलिए इसके आकार, सतह और संरचना के आकार पर इनका व्यवहार भी उसी पदार्थ के सामान्य आकार के रूप में अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, कॉपर ऑक्साइड, काइटोसेन आधारित नैनो फॉर्मुलेशन का उपयोग

0: रोग प्रबंधन में किया जा रहा है?
1: पौध रोग प्रबंधन में इतनी सारी तकनीकों का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बात करें पौधों में रोग वो कैसे फैलता है, वह बताएं आप।
0: पौधों में रोग कई प्रकार के रोग जिनों के कारण होते हैं, जिनमें अपन बात करें कवक, विषाणु, कुछ अन्य रोग कारक शामिल है जैसे जीवाणु, फफूंद और शैवाल। ये बीज मृदा संक्रमित पौध अवशेष, हवा, पानी, कीटों या कृषि उपकरणों के माध्यम से फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में रतुआ, बाजरा में अर्गट रोग, मूंग में पर्ण धब्बा रोग, टमाटर में अगेती झुलसा, चने में उकठा रोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण समस्या पैदा करता है। इन रोगों को नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग की सही पहचान करना आवश्यक है तथा केवल पत्तियों पर धब्बे देख बिना सही निदान के दवा का उपयोग करना उचित नहीं है। इसलिए इस रोग के निदान के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी, अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी में पौध रोग प्रबंधन की, तो वो कैसे हमारी सहायता करती है?
0: नैनो टेक्नोलॉजी पौध रोग प्रबंधन के माध्यम से ऐसे पदार्थ और फॉर्मुलेशन विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो रोगजनों को नियंत्रित करने, सक्रिय पदार्थों की आपूर्ति सुधारने या पौधों की रक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित करने में सहायक है। जैसे पहला अपन बात करें रोगजनों का नियंत्रण, कुछ नैनो पार्टिकल्स प्रयोगशालाओं में विशेष कवकों और जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात करें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का कुछ पादप रोगजनों को विरुद्ध परीक्षण किया गया है। दूसरा अपन बात करते हैं सक्रिय पदार्थों की लक्षित आपूर्ति, जैसे नैनो फॉर्मुलेशन का उपयोग सक्रिय पदार्थों को नियंत्रित तरीके से मुक्त करने या उनकी स्थिरता या आपूर्ति में सुधार करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इनमें से कुछ परिस्थितियों में उपचार की दक्षता बढ़ाने की संभावना होती है। अगर अपन बात करें तीसरे की, तो पौधों की रक्षा प्रतिक्रिया में कुछ नैनो पार्टिकल सहायक है। और चौथे में, अगर चौथे की बात करें तो रोग की पहचान में नैनो टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे नैनो बायोसेंसर जैसी तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीकी का उद्देश्य रोगजनों को या उनसे संबंधित संकेतों को शीघ्र पहचान कर और उनका निदान करना जरूरी है।
1: जी, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रमुख अगर उदाहरणों की बात करें तो आप समझाएं कि नैनो टेक्नोलॉजी हमारे किस प्रकार सहायता करती है।
0: नैनो टेक्नोलॉजी के प्रमुख उदाहरण, जैसे अब मैं बात करूं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, इनकी कुछ फॉर्मुलेशन में सूक्ष्म जीवी कोशिका और उनकी जैविक क्रिया प्रक्रिया को प्रभाव देखा गया है। पादप रोग विज्ञान में इनका परीक्षण विभिन्न कवक एवं जीवाणु रोगजनों को विरुद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें किसी प्रयोगशाला में किसी फसल के रोगजनक कवक पर सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का उचित परीक्षण किया जाता है तो उसकी वृद्धि उसको रोक देता है उस रोग को। तो इसलिए इस प्रकार सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बहुत उपयोगी है फसलों के रोगों को नियंत्रण करने के लिए। और इसके दूसरे उदाहरण की बात करें जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, ये रोगजनों के विरुद्ध प्रभाव और पौधों की वृद्धि तथा जिंक पोषण से संबंधित प्रतिक्रियाओं के उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन जिंक पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होने के बावजूद इनकी अधिक मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नैनो जिंक को सामान्य जिंक ओवर के समान नहीं मानना चाहिए और न ही ये बिना परीक्षण के जिंक ऑक्साइड का किसान भाइयों को उपयोग लेना चाहिए।
1: अगर हम बात करें इसके लाभों की, तो नैनो टेक्नोलॉजी से हमारे किसान भाई बहनों को किस प्रकार से और कैसे लाभ हो सकते हैं?
0: किसानों को नैनो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे प्रभाव दिखाई दिए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से यदि ये नैनो आधारित तकनीकी है जिसको उचित वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद विकसित किया गया है। पहला है इसमें रोग नियंत्रण के नए विकल्पों का विकास, इसमें विभिन्न रोगों के लिए प्रभावी उपचारों की खोज में मदद करता है। दूसरा लाभ है उपचार की दक्षता में संभावित सुधार, कुछ नैनो फॉर्मुलेशन सक्रिय पदार्थों की आपूर्ति या स्थिरता बेहतर बना सकते हैं। इसका तीसरा लाभ है रोग की शीघ्र पहचान, नैनो टेक्नोलॉजी से नई तकनीकों का विकास होता है। समय पर रोग की पहचान होने पर किसान भाइयों को उपयुक्त नियंत्रण व उपाय जल्दी मिल सकता है। चौथा लाभ है अधिक टिकाऊ कृषि की दिशा में अनुसंधान, यदि कोई नैनो आधारित तकनीक रोग नियंत्रण के साथ साथ पर्यावरण एवं लाभकारी जीवों के लिए भी सुरक्षित है तो इस प्रकार ये नैनो टेक्नोलॉजी किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।
1: जी, अगर हम बात करें इनकी सावधानियों की, तो नैनो टेक्नोलॉजी को अपनाते समय हम किस प्रकार की सावधानियां बरतें जिससे कि किसान भाई बहनों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े बल्कि लाभ ही लाभ हो।
0: किसान भाइयों को नैनो टेक्नोलॉजी की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं केवल अधिकृत और विश्वसनीय स्रोत से उपलब्ध कृषि उत्पादों का उपयोग करें और उत्पाद के लेबल, अनुमोदित फसल, लक्षित रोग, निर्धारित मात्रा और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। बिना वैज्ञानिक प्रमाण के नैनो उत्पादों को पारंपरिक फफूंदनाशक

0: बेहतर न माने, अलग अलग नैनो उत्पादों को आपस में मिलाने से पहले उनकी अनुकूलता और आधिकारिक निर्देशों की जांच करें। छिड़काव के दौरान आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, जैसे नैनो सिल्वर या अन्य पदार्थों का अनियंत्रित प्रयोग न करें, क्योंकि इनके अवशेष मृदा, जल और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को भी प्रभावित कर सकते हैं। किसान नई तकनीकों को बड़े खेत में अपनाने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और छोटे स्तर पर प्रमाणित परीक्षणों के परिणाम को समझें।
1: अगर हम बात करें कि समेकित रोग प्रबंधन में नैनो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है, किस प्रकार की भूमिका निभा सकती है, तो वो मार्ग आप प्रशस्त करें।
0: समेकित रोग प्रबंधन में नैनो टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पौधों रोगों का प्रभावी प्रबंधन किसी एक दवा या तकनीक पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए समेकित रोग प्रबंधन अपनाना आवश्यक है। इसमें रोगरोधी किस्मों का चयन, स्वस्थ बीज, उचित बीज उपचार, फसल चक्र, संतुलित उर्वरक उपयोग, खेत की स्वच्छता, रोगग्रस्त अवशेषों का उचित प्रबंधन, जैविक नियंत्रण तथा आवश्यकता के अनुसार अनुमोदित फफूंदनाशकों का प्रयोग शामिल है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इन उपायों का विकल्प मानने के बजाय एक संभावित और अतिरिक्त आधुनिक तकनीक के रूप में देखा जाना चाहिए। जब किसी नैनो आधारित उत्पाद की प्रभावकारिता, सुरक्षा और आर्थिक उपयोगिता का प्रमाणित हो जाए, तभी उसे उपयुक्त समेकित रोग प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते आप किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश, क्या सूचना देना चाहेंगे? कुछ चीज जो रह गई हो बताने से तो बताना चाहेंगे।
0: किसानों के लिए प्रमुख संदेश यह है, किसान भाइयों, नैनो टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ क्षेत्र है। यह पौध रोगों की पहचान, रोगजनकों का नियंत्रण तथा सक्रिय पदार्थों की बेहतर आपूर्ति के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। लेकिन हर नैनो पदार्थ लाभकारी भी नहीं होता, नहीं ही हर उत्पाद सभी फसलों रोगों के लिए उपयोगी होता है। इसलिए सही रोग की पहचान, प्रमाणित कृषि उत्पाद, संतुलित खेती, विशेषज्ञों की सलाह व समेकित रोग प्रबंधन को प्राथमिकता दे। नई तकनीक तभी आवश्यक वास्तविक रूप से उपयोगी होगी जब वह किसान की फसल, स्वास्थ्य, आमदनी और पर्यावरण चारों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
1: श्रोताओं, अभी हमने जानकारी ली डॉक्टर तेजपाल बाजिया जी से। विषय था नैनो टेक्नोलॉजी पौध रोग प्रबंधन की आधुनिक एवं प्रभावी तकनीक पर। और हमें जानकारी देने के लिए आए SRF प्लांट पैथोलॉजी कॉलेज, SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर से डॉक्टर तेजपाल बाजिया। इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: हाँ, तो देखो अदिति जी, बहुत बढ़िया जानकारी नैनो टेक्नोलॉजी पौध रोपण प्रबंधन की आधुनिक और प्रभावी तकनीक के बारे में तेजपाल जी बाजिया से बातचीत करी, किसाना के लिए फायदेमंद होवेली
1: जी।
3: अब कार्यक्रम ना आगे बढ़ाता हुआ
1: गीत संगीत की ओर रुख करा, धन्यवाद स्वरूप आने सुनवा दे, मीठो सो लोकगीत
3: सुनाओ सो।

0: बच्चू खान लंगर साथी की आवाज में मीठो सो गीत मूमला बार आपा सुनिया और सुनता सुनता घड़ी की सुई भी इशारो कर रही छे कि किसान वाणी कार्यक्रम को समय पूरो होतो जा रियो छे। तो देव अदिति ने
1: और दौलत पारिक ने अनुमति और करा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
1: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
0: वो कैसे?
1: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
0: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच।

0: और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: खेतीबाड़ी कार्यक्रम थी बाट जाऊता सड़क किसान भाई ने दौलत पारी थी गणी गणी राम राम। अदिति आपने भी गणी गणी राम राम।
4: राम राम सा दौलत भाई और सुनबाड़ा से अगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो नेह भरियो नमस्कार और राम राम सा।
3: ये खेती बाड़ी सु जुड़ियो हुआ कार्यक्रम है, खेती किसानी सु जुड़ी बातचीत आप करा, आज भी एक विषय पर आप जानकारी दिलावा, लेकिन शुरुआती बात करा कि खेती बाड़ी कर रिया किसाना ने पानी की महत्व है वो ज्यादा पतो है
4: जी,
3: क्योंकि बारिश कम हुए तो असिंचित क्षेत्र में बड़ी समस्या हो जावे।

0: तो असिंचित क्षेत्र में बड़ी समस्या हो जावे
1: जी।
0: और अभी जो रबी की सीजन है जटे सिंचाई की व्यवस्था है बटे तो ठीक है, लेकिन जटे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वे किसान वो खेती नहीं कर सके
1: जी। तो अगेती बुवाई का ताई टेम सारू पानी आपने चाहिए, माटी में नमी चाहिए और नमी के लिए आपने एक दो बार तो सिंचाई चाहिए।
0: देखो अदिति बात यान की छे कि खेती बाड़ी कर रहा किसाना ने, किसाना की योजना है बहुत तरह तरह की योजना, चाहे राज्य सरकार की हो केंद्र सरकार की हो
1: जी।
0: और तो लेकिन भाभी आप बात कराना, लेकिन अबार की बात करानी तो शुरुआत में अपा खेती किसानी इन्हें जागरूकता करवा के दिए लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए बतावा भी हाँ। और समय समय पर किसाना ने यह जानना जरूरी है कि खेती बाड़ी में जो भी काम कर रहे हैं समय से पहली अगर आप तैयार रहे वहां चाहे खेत की बुआई हो, चाहे खेत की पिलाई हो, चाहे बुआई हो, चाहे कोई भी काम हो
1: जी।
0: तो रबी फसल की तैयारी कर रिया किसाना ने अबार या देखने की कौन कौन सी फसला की तो बुआई हो रही है और कौन कौन सी फसला को आगामी दिनों में बुआई हो तो उसको खेत वगैरह तैयार करवा की अबार की जरूरत है
1: जी।
0: और किस्म जो है बीज आप जो भी वो किस्म जरूर आप ध्यान रखा, जब भी बीज आप दुकान से लेवा तो थैली फटी हुई ना हो, बीके बेच नंबर हो, बीके तरह तरह की जो भी चीजें आपने विशेषज्ञ बतावे वे सब होनी चाहिए। और बीज बोया के बाद में थैली ने फेंका नहीं जब तक आपा की फसल वापस घर में नहीं आ जाए, क्योंकि कई बार आप देखा कोई कीट लागियो, रोग लागियो, बीमारी लागियो तो विशेषज्ञ बताओ कि कौन सो बीज बोयो, कौन सी किस्म ही, कौन सो काई चीजा ही। तो अगर थैली पे जो बेच नंबर या बिकी केस में या बिकी तरह तरह की जानकारी अगर आपने पतो हुए तो आपा बिको इलाज अच्छी तरीका से कर सका
1: जी। सागे आपने माटी पानी की जांच जो टेम शुरू करनी चाहिए तो माटी की जांच के लिए भी आपने सावचेती अपनानी चाहिए कि रबी की फसल की बुवाई की तैयारी अबार हो रही चाहे खेत की माटी आपने ले विशेषज्ञ कने आपने जो समाधान कोई बतावे तो वह समाधान आपने करनो चाहे माटी की बुवाई माटी में काई परेशानी है, कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन सी बेसी चीज है जिन्हें आपने कम करना है पैदावार के लिए।
0: बिल्कुल देखो अदिति बात यान की कि जब बीजोपचार करदा किस्म की भी जानकारी लेला, बेच नंबर भी बता दिया, हर तरह की चीजा बताया कि बाद में भी आपा की फसल के मायने कोई ज्यादा उपज को न हो तो फिर कई बार आपने अपन किस्मत ने आपा केवा की कोनी सही कोनी कारण की फसल कौन हुई, लेकिन एक मिट्टी की जांच है ना वो बड़ो कारण हो सके
1: जी।
0: किसान जब भी खेतीबाड़ी करे विशेषज्ञ से बात करा पर फसल के बारे में बतावा तो पतो चले कि सब चीजा सही है, जमीन की मिट्टी की जांच कौन करी ई वजह सु कई चीजें अपन ध्यान कौन रहे। तो मिट्टी और पानी की जांच करवा सु एक तरह से अपा यहाँ कह सके आपा के स्वास्थ्य की जहाँ ध्यान रहे अपन ने पतो लागे। कई बार आपा कहवा कि मन कौन लाग रहे है, दूसरी चीजा हो रही है, थकान सी हो रही है, लेकिन आप जांच करना था पता चल रहा है शरीर में कौन सा पोषक तत्व है, कौन सी सूक्ष्म तत्व या कौन सी कई चीजा की कमी है, ठीक भी तरीका सु जमीन की मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कौन सा सूक्ष्म तत्व है वे कम है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा ग्लूकोज चलाना है, वे सब मिट्टी पानी की जांच के बाद ही पता चले
1: जी सर। और ये जांच आपने लेबोरेटरी के माध्यम से विषय विशेषज्ञ आपने बतावे वठे जार आपने करवानी है और वहां के बताए अनुसार ही आपने आगे काम करना है।
0: बिल्कुल तो कार्यक्रम में आगे बढ़ावा
1: जी सर। और नवरात्र जिया चल रहा है तो माता रानी ने ध्यावा मनावा और वहां को भजन कीर्तन सुना
0: सुनो सर।

0: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
1: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
0: वो कैसे?
1: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
0: कॉल 1800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
2: जी सर, अबार माता ने ध्याया मनाया कांता देवी की मीठी सी आवाज के मायने। अब सब कार्यक्रम में जानकारी रो बखत तो आयो छे, तो लेवा जानकारी आशा बहन दिलवारी छे, आपने जानकारी सुना पा सब मिला?
3: बिल्कुल सुनो सा।
4: श्रोतावा, आज आपने साथ स्टूडियो में छे डॉक्टर राजेश कुमार सैनी। आप हरित गृह विशेषज्ञ एवं इंटरनेशनल ट्रेनर भी छे और आज आप यहाँ से बात करेला सिंचाई की सूक्ष्म विधियां का बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
5: राम राम सा
4: जी। हाँ, की डॉक्टर साहब, आप आज बात करेला की सिंचाई की जो विधियां हुए छे, सूक्ष्म विधियां, वे कौन कौन सी छे? सबसे पहले तो काश्तकार भाई ने मोटा तौर पर बताओ सा कि कौन कौन सी सूक्ष्म विधियां छे जाने काश्तकार भाई काम में ले सके छे सिंचाई के में।
5: किसान भाइयों, जब हम सिंचाई की सूक्ष्म विधियों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से चार

0: विधियां आती हैं, जैसे फवारा पद्धति जिसको कि आप स्प्रिंकलर कहते हैं, छोटा फवारा पद्धति जिसको कि आप मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं, और तीसरा जो है रेन गन आज काफी चलन में है, और ज्यादातर जो किसान भाई आज अपना रहे हैं वो है ड्रिप इरिगेशन, जो है समय की मांग।
1: तो देखो सर डॉक्टर साहब, आप जी को प्रदेश जो यही पानी की कमी है, और काश्तकार बहन है यदि यहाँ सूक्ष्म सिंचाई विधियां को अगर जानकारी हो तो वे कम मात्रा में पानी न काम ले चोखो उत्पादन ले सके है। अब आप सुन जानबो चाहूंगा सर कि सबसे पहले तो आप यही बताओ भाई, जो सबसे ज्यादा कारगर विधि है वह कसी है, और क्यों आपने यहाँ सूक्ष्म सिंचाई विधियां की काश्तकार बहन ने जरूरत पड़ी?
0: किसान भाइयों, शुरू में जो हम सिंचाई करते थे वो धोरों से करते थे, चैनल से करते थे, परंतु जैसे जैसे पानी की कमी होती गई, यानी कि भू जल स्तर जमीन में नीचे जाता गया, वैसे वैसे हमें नई सिंचाई पद्धति के बारे में सोचना पड़ा, और चलन में आई फवारा पद्धति। उसके पश्चात और पानी अगर डाउन गया तो फिर मिनी स्प्रिंकलर्स की बात करने लगे हम लोग, फिर रेन गन की बात करने लगे, और अब बात करते हैं हम ड्रिप इरीगेशन की, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र। हर बूंद की अपनी एक कीमत है, और हर बूंद से हम हमारे जो किसान भाई है ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। समय आ गया है बूंद बूंद सिंचाई तंत्र प्रणाली को अपनाने का, और हमारे बहुत सारे किसान भाई इसे अपना भी रहे हैं। तो स्प्रिंकलर में तो फवारा पद्धति होती है, जैसे कि आपने समझ लीजिए आप, आपका जो पानी का स्रोत है वहां पे पंप सेट लगा के, पाइपे बिछा के और फवारा लगा के हम पानी को कृत्रिम वर्षा के रूप में गिराते हैं
1: जी।
0: और उससे जो छोटे फवारे आ गए जो कि ऊंचाई में छोटे होते हैं, तो उन्हें मिनी स्प्रिंकलर कहा जाने लगा, और इनको भी फवारा पद्धति के रूप में ही काम में लिया जाता है। और फिर रेन गन जो है, रेन गन है वो भी एक प्रकार का, जैसे कि आप बोलते हैं रेन और गन, रेन मतलब बरसात, कृत्रिम बरसात करा रहे हैं हम, एक तरह से बरसात हो रही है, वास्तव में बरसात नहीं है लेकिन फवारा पद्धति के द्वारा बारिश की जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि आपको उच्च दबाव बनाया जाता है पानी के ऊपर, और उसके बाद में बौछार की जाती है, इसमें क्या होता है पानी की बचत होती है, और भूमि का जो सिंचन करने का इलाका है वो बढ़ जाता है, और खरपतवार कम होती है, ऊर्जा की बचत होती है। ये कुछ फायदे हैं जिसको ध्यान में लेके सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लोग अपना रहे हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, मोटा तौर पर आप जिया की चार विधियां को नाम बताया जो स्प्रिंकलर फवारा, छोटा फवारा, रेनगर और बूंद बूंद सिंचाई। अब आपसे यह जानबो चावला आपा कि बूंद बूंद सिंचाई जो तंत्र छे वो काई छे, किया कर काश्तकार भाई को उपयोग करे छे, और किया कर यो कारगर हो छे?
0: किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि पौधे की जड़ों के पास में बूंद बूंद पानी गिराया जाता है, जिससे कि पौधे को जहां जरूरत है, सबसे ज्यादा पौधे को पानी की जरूरत होती है जड़ों में, और उधर जब बूंद बूंद के रूप में वहां पानी गिराया जाता है तो उस प्रणाली को हम बूंद बूंद सिंचाई तंत्र कहते हैं। इसमें जो है पाइपों का एक जाल बिछा दिया जाता है पूरे खेत के अंदर, और उसके द्वारा फिर ड्रिपर्स लगा के अंत में जो पॉइंट होता है उसको ड्रिपर्स कहते हैं, उसके जरिए पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है। और इसके साथ हम कई बार के उर्वरक भी मिला के दे देते हैं, पानी में घुलनशील होने वाले उर्वरक, जैसे कि 19-19-19 हो गया, 13-0-45 हो गया, 0-52-34 हो गया, 0-0-50 हो गया, ये सब चीजें भी हम मिला के दे देते हैं। कई बार हम कीटनाशी जो होते हैं उनको भी मिला के हम पौधों की जड़ों तक पहुंचा देते हैं। तो ये सब फायदे हैं जो कि हमारे बूंद बूंद सिंचाई तंत्र से हम प्राप्त कर पाते हैं। और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में हम बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे पानी की बचत होती है, उर्वरकों की बचत होती है, कीटनाशकों की खपत काफी हद तक कम होती है, क्योंकि जहां हमें देना है वहां हम पानी के जरिए उनकी जड़ों तक पहुंचा पाते हैं। भूमि की बचत होती है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम परंपरागत खेती करते हैं तो उसमें धोरे बना के जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी की अधिकता लगती है, और उसके धोरों में ही काफी जमीन खराब हो जाती है। वहीं अगर आप बूंद बूंद सिंचाई तंत्र को अपनाते हैं तो 5-7% तक हमें ज्यादा जगह मिल जाती है जिसमें हम खेती कर पाते हैं। खरपतवार में काफी हद तक कमी आती है, क्योंकि जो खरपतवार है, अनावश्यक जो बीज है, उनको पानी मिल ही नहीं पाता तो वो उग ही नहीं पाते। तो ये कुछ चीजें हैं। ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि जब आप ओपन में जब धोरों से पानी देते हैं तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी निकालना पड़ता है जमीन से, उसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है, पर बूंद बूंद सिंचाई में एरिया भी काफी ज्यादा कवर हो जाता है और साथ में हमारा ऊर्जा का खर्च भी कम आता है। तेज हवाएं अगर चल रही हैं तो भी हम जहां स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर को चलाने में हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वहीं बूंद बूंद सिंचाई तंत्र में हम आसानी से पौधों को सिंचाई कर सकते हैं, और दवाई या फिर हमें उर्वरक देने हैं तो वो दिए जा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लगाना, काम में लेना और उसका रख रखाव करना भी काफी आसान है
1: जी। तो काश्तकार भाई, देखो डॉक्टर साहब अपन ने बता दिया भाई बूंद बूंद सिंचाई तंत्र और उनका फायदा काई छे, किन तरीका से कितना मोटा मोटा फायदा छे, अगर थोड़ी सी समझदारी से आप इन्हें काम में लेवा। तो अब डॉक्टर साहब जब आप बूंद बूंद सिंचाई की बात करी रहे छा तो आपसे यह भी जानबू चाहूं ना भाई, इका जो मुख्य

0: घटक छे वे काई छे बताओ समा का काश्तकार भाई ने।
1: किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र के मुख्य घटक जो है उसमें हम सबसे पहले बात करें तो पानी का स्रोत। पानी का स्रोत क्या है, कुआ है या फिर बोरिंग है या तालाब है या टंकी है या किससे आप पानी दे रहे हैं। दूसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर, जिसमें कि हम हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की बात करते हैं, हम सैंड फिल्टर की बात करते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी फिल्टर की बात करें तो उसमें स्क्रीन फिल्टर या फिर डिस्क फिल्टर, तो ये चीजें हैं। वाल्व की बात करें तो कंट्रोल वाल्व, जिससे कि पानी का आवागमन को हम नियंत्रित करते हैं। फ्लश वाल्व, जिससे कि हम हमारी जो पाइपें हैं उसमें अगर काई कचरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए जो हम वाल्व इस्तेमाल करते हैं उसको फ्लश वाल्व कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने से पूर्व पाइपों में कुछ हवा भर जाती है, जिसको अगर हम नहीं निकाली जाए तो पाइप फटने का खतरा रहता है, अंदेशा रहता है। तो ऐसे में हम जो वाल्व का इस्तेमाल करते हैं उसको एयर रिलीज वाल्व कहते हैं। और ऐसे ही नॉन रिटर्न वाल्व, जिससे कि पानी जो आपने एक बार पंप कर दिया है वो वापस मोटर के ऊपर जोर ना डाले, बैक फ्लो ना हो, तो इसके लिए भी नॉन रिटर्न वाल्व, ये कुछ चीजें काम में ली जाती हैं। उसके अलावा जो प्रेशर गेज है, दाब को नापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको प्रेशर गेज कहते हैं। और इस प्रेशर गेज पे खास तौर से ये ध्यान में रखा जाता है, जहां पानी का इनलेट हो रहा है वहां पे एक प्रेशर गेज लगाया जाता है और आउटलेट पे एक प्रेशर गेज लगाया जाता है, और दोनों प्रेशर गेज के अंदर जो रीडिंग आती है लगभग एक समान आनी चाहिए। अगर ज्यादा उसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइप में चौकअप है या फिल्टर में कहीं रुकावट आ गई है, तो ये हमें सचेत करता है कि हमें फिल्टर साफ करना है। वहीं प्रेशर जो है हमको काम में जो लेना है, 1 kg फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो प्रेशर है, इससे कम प्रेशर अगर होगा तो हमारे जो ड्रिपर्स है वो काम नहीं कर पाते सुचारू रूप से। वहीं अगर 4 kg फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर, उससे ज्यादा अगर है तो पाइप फटने का अंदेशा रहता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि कितना प्रेशर हमें मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटक है उसको बोलते हैं वेंचुरी, या फिर हम बोलते हैं फर्टिलाइजर टैंक। तो किसान को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो वेंचुरी लगाना चाहता है या फर्टिलाइजर टैंक, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और इनके द्वारा क्या होता है कि जो उर्वरक है, पानी में घुलनशील उर्वरक पानी के अंदर घोलकर हम बूंद बूंद सिंचाई तंत्र के द्वारा पौधों की जड़ों तक हम पहुंचा पाते हैं, और दोनों ही कारगर हैं। मेन लाइन और सब मेन लाइन जो है, पाइप की दो प्रकार की लाइन होती है, मेन लाइन और सब मेन लाइन, जो कि HDPE जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की बनी हुई होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में जो है वो काले रंग की पतली पाइपें होती हैं जिसको कि हम लैटरल्स कहते हैं, जो कि 12 mm की होती है और 16 mm की और 20 mm की होती है। ज्यादातर जो आजकल इस्तेमाल में लाई जा रही है वो 16 mm वाली है, और 16 mm की जो लैटरल लाइन होती है उसकी जो पानी को लेके चलने की क्षमता होती है, 400 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो पानी को लेके चलने की उसकी क्षमता होती है। वहीं अगर 12 mm की बात करें तो 200 लीटर प्रति घंटा का उसका क्षमता होती है। वहीं 20 mm की अगर बात करें लेटरल्स की, तो 600 लीटर प्रति घंटा पानी को लेके चलने की क्षमता उसकी होती है। और इन्हीं लेटरल्स के ऊपर कुछ ड्रिपर्स लगे होते हैं, जिनको कि ऑनलाइन ड्रिपर्स या इनलाइन ड्रिपर्स कहा जाता है। और इनसे जो रिसाव निकलता है, पानी जो निकलता है, तो उसको हम नापते हैं LPH में, लीटर पर आवर, एक घंटे में कितना पानी निकला उस ड्रिप से, वो उसका डिस्चार्ज कहलाता है। और डिस्चार्ज के आधार पर हम ये ड्रिपर्स को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, निम्न डिस्चार्ज वाले जो कि 0.25 लीटर से लेकर 1 लीटर तक की क्षमता वाले, और मीडियम डिस्चार्ज वाले 2 से 4 लीटर वाले, और हाई डिस्चार्ज वाले 5 लीटर से अधिक डिस्चार्ज जो देते हैं उन ड्रिपर्स को।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही विस्तार से आप बता दिया कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का जो घटक है वे कहीं कहीं है। अब ऑनलाइन ड्रिपर्स और इनलाइन जो ड्रिपर्स है वे भी कास्ता चलन में है, और काश्तकार भाई कुछ तो जाने से पर कुछ नहीं, जानकारी को अभाव है, तो आपसे जानवो चाहूंगा भाई ये कहीं हुए थे और किन तरीका से माका जो काश्तकार भाई है वे आपकी फसल में सिंचाई का रूप में यानी काम में ले सके।
1: ऑनलाइन ड्रिपर्स वो ड्रिपर्स होते हैं जो कि लेटरल्स के ऊपर फिक्स किए जाते हैं, ऊपर लगाए जाते हैं, और इनलाइन ड्रिपर्स जो होते हैं कि वो पहले से ही फैक्ट्री में ही ड्रिप लाइन के अंदर लगे हुए आते हैं। अब दोनों का उपयोग क्या है, उपयोग जो फसलें होती हैं जो जिनमें दूरियां कम होती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, तो सब्जियों में दूरी पौधे से पौधे की दूरी कम होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, 45 सेंटीमीटर की होती है, 60 या 120 सेंटीमीटर की होती है, तो इन सब चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनलाइन ड्रिपर्स का। अगर आप तंबाकू की खेती कर रहे हैं तो भी उसमें इनलाइन ड्रिपर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना की खेती कर रहे हैं आप, केले की खेती कर रहे हैं, तो भी उसमें इनलाइन ड्रिपर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन ड्रिपर्स खास तौर से उन पेड़ पौधों के लिए होते हैं जिनकी दूरियां ज्यादा होती हैं। खास तौर से अगर मैं कहूं बगीचों के बारे में बात करूं, आम का बगीचा हो गया, अनार का बगीचा हो गया, नींबू का बगीचा हो गया, या आंवले का बगीचा हो गया, तो इन सब चीजों में जो ड्रिपर्स लगाए जाते हैं वो ऑनलाइन ड्रिपर्स होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है।
0: जी, बहुत ही बढ़िया आप बताया सर। अब आपसे चलता चलता यही जानबो चाहूंगा भाई, ड्रिप सिंचाई तंत्र लगाती टाइम का जो

0: काश्तकार भैया छे वे कुनकुन सी ऐसी खास मोटी बात छे जाको अगर ध्यान में राखेला तो वहां को जो सिंचाई तंत्र छे वो निकातरी काम करेलो और वहां ने जो लागत को मूल्य लागे छे उनको पूरा फायदो भी मिले लो।
1: किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बगीचा इत्यादि के रूप में अगर आप कोई चीज लगा रहे हैं तो आपको वो पहले तय करना होगा कि कौन सी चीज आप करने वाले हैं, उसके हिसाब से ही आप ड्रिप सिस्टम का चयन करें। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि आपको कौन सी कंपनी का ड्रिप सिस्टम लगाना चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनी का चयन करें जो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देती हो और जो आसपास के किसान भाइयों ने पहले काम में लिया है और उनका उनके प्रति अच्छा रुझान है, तो उन चीजों का आप इस्तेमाल करें। नजदीकतम जो कृषि और उद्यानिकी विभाग है उनके अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, ई मित्र पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सही फिल्टर का चयन करें, प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर जब आप चयनित करते हैं, वेंचुरी सिस्टम लगाना है या फर्टिलाइजर टैंक लगाना है इसके बारे में भी आप निर्णय लें कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। और ड्रिप सिस्टम है, वेंचुरी सिस्टम है, फर्टिलाइजर टैंक सिस्टम है, इसको प्रायोगिक तौर पर कैसे काम में लेना है, इसके रख रखाव कैसे करना है, इसकी भी आप जो कंपनी आपको लगा के दे रही है सिस्टम उससे जानकारी ले लें और या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करें। आसपास के किसान भाई जिन्होंने ड्रिप लगा रखी है उनके खेतों की विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें कि कैसे इसको काम में लिया जाता है और क्या इसमें करना पड़ेगा, किस तरीके से इसकी देखभाल की जा सकती है।
0: जी तो सावधानियां की बात तो मोटी तौर पर होगी, अब थोड़ी सी अगर आप यह भी बता दो भाई क्यों जरूरी चेक करना, अगर कौन करेला तो कई नुकसान होगा की संभावना।
1: रख रखाव करना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की रख रखाव करते हैं तो 10 से 15 वर्ष तक इस ड्रिप इरीगेशन को आप वापर सकते हैं और अगर रख रखाव नहीं करोगे तो कोई भी चीज खराब हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर से समय समय पर साफ करना जरूरी है, चाहे आप साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं, पाक्षिक रूप से या महीने के हिसाब से या जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैन्युअली कर सकते हैं या सिस्टम को चालू रनिंग सिस्टम में बैक फ्लश करके बैक वॉश करके भी कर सकते हैं। लेटरल लाइन्स है उनकी एंड कैप को, लास्ट में जो कैप होती है उसको एंड कैप कहते हैं, उस चालू सिस्टम में साफ कर सकते हैं। ड्रिपर्स ऑनलाइन और इनलाइन ड्रिपर्स है उनकी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है और ज्यादा समय तक अगर आप साफ सफाई नहीं कर पाते या आपकी जो पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है या साल्ट ज्यादा है तो ऐसे में आपको कुछ समय पश्चात आपको एसिड ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। इसमें एसिड ट्रीटमेंट में आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप एसिड ट्रीटमेंट करें तो पहली बार जब करते हैं तो आप जिस कंपनी ने आपको लगा कर दिया उसके अधिकारियों को बुलाएं और उनसे करवाएं और आप प्रशिक्षण लें। एक बार जब प्रशिक्षित हो जाते हैं आप तो फिर अगली बार आप एसिड ट्रीटमेंट स्वयं भी कर सकते हैं। और फसल कटाई होने के पश्चात खेत में जब आप जुताई करते हैं तो उस समय ये जो भी लेटरल्स हैं इनको इकट्ठा कर लें और जब पुनः आप खेती करते हैं तब उस समय इनको साफ सफाई करके पुनः स्थापित करें और उपयोग में लें।
0: जी काश्तकार भैया डॉक्टर राजेश कुमार सैनी हरित गृह विशेषज्ञ एवं इंटरनेशनल ट्रेनर भी आप छे और आज आपने स्टूडियो में आया और आपने बताया कि सिंचाई की जो सूक्ष्म विधियां छे वे कौन कौन सी छे कि यहाँ सरकार सो आप अनुदान ले रही को फायदो ले सको छो, तो उम्मीद करा छा यहाँ के द्वारा दी गई जानकारी आपने खूब फायदेमंद हो वाली और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी दे बताई डॉक्टर साहब, आपको खूब खूब धन्यवाद सा।
2: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम भेड़ा री बाता सुनिए हर शनिवार शाम 7 से 7:30 बजे तक।
3: सुनो इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
4: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
3: वो कैसे?
4: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
3: कॉल 1800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
5: हाँ तो बूंद बूंद सिंचाई विधि डॉक्टर राजेश सैनी जानकारी दीवी, बहुत बढ़िया जानकारी। तो राजेश जी और आशा बहन ने देवा धन्यवाद
6: और धन्यवाद री भेट स्वरूप सुनाए गी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले गाना आपको सुना रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, खामोशिया फिल्म से। बोल होंगे रश्मि सिंह के और संगीत जीत गांगुली का।

श्रोताओं, अगला गाना आप सुनेंगे सांवरिया फिल्म से, शान की आवाज में, बोल होंगे समीर के और संगीत मोंटी का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गाना आपको हम सुनाने जा रहे हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म से श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में। बोल होंगे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

अगला गाना आप सुनेंगे रॉय फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में, बोल होंगे अभेंद्र कुमार उपाध्याय के और संगीत अंकित तिवारी का।

अगला गाना आप सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में लुटेरा फिल्म से, बोल होंगे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

अगला गाना सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, एयरलिफ्ट फिल्म से, बोल होंगे कुमार के और संगीत अमाल मलिक का।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 होने को है। अब आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, रात के 8:30 बज चुके हैं और ये समय है आकाशवाणी की तरंगों पर खेल मैदानों के रोमांच और ताजा लाइव अपडेट्स से सजे आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के अंक में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और हमेशा की तरह आज स्टूडियो में आज के इन ताजा अपडेट्स पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी सिद्धार्थ।
1: धन्यवाद जया और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये मंगलवार खेल प्रेमियों के लिए बेहद व्यस्त और हैरान करने वाले नतीजों से भरा रहा है। एक तरफ जहां डेनमार्क के कोर्ट से इस समय हमारे पास बेहद ताजा और लाइव खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ दो बड़ी राष्ट्रीय टीमों का ऐलान हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ। तो श्रोताओं, सभी खबरों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस वक्त की प्रमुख खेल सुर्खियों पर।
1: डेनमार्क ओपन सुपर 750 में भारत को दो बड़े झटके और दो राहत। चाउ टियन चेन के हाथों लक्ष्य सेन की हार और पीवी सिंधु भी प्रतियोगिता से बाहर, लेकिन किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा ने दर्ज की शानदार जीत।
0: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा, कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में रहेगी टीम की कमान।
1: नागोया पैरा एशियन गेम्स के लिए खेल मंत्रालय ने दी 166 एथलीटों के दल को हरी झंडी। प्रमोद भगत और भावना पटेल होंगे ध्वजवाहक।
0: रणजी ट्रॉफी 2026 के पहले दौर के मुकाबले समाप्त हुए। मुंबई और उत्तर प्रदेश ने एक पारी के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
1: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड पांचवीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
0: और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला कल हैदराबाद में। श्रोताओं, सब

0: पहले बात डेनमार्क ओपन की, इसके लिए रुख करते हैं ओंडेस शहर का, जहां आज से डेनमार्क ओपन सुपर 750 के पहले दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सिद्धार्थ कोर्ट से इस समय हमारे पास जो खबरें आ रही है उसमें थोड़ी निराशा और खुशी दोनों शामिल है।
1: बिल्कुल जी, पहले ही दौर में भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। हमारे स्टार शटलर लक्ष्य सेन पुरुषों के सिंगल्स के

0: बाद किदांबी श्रीकांत की जीत ने लक्ष्य की हार के गम को तुरंत भुला दिया। श्रीकांत ने आज कमाल का संयम दिखाते हुए फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को सीधे सेटों में 22-20 और 21-19 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है।
1: बिल्कुल जया, इसके अलावा महिला सिंगल्स में हमारी 17 वर्षीय युवा सनसनी तन्वी शर्मा ने भी जापान की नात्सुकी निदाइरा को 2-1 से हरा कर एक बड़ा उलटफेर किया है। हालांकि पीवी सिंधु जर्मनी की वाइली से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। सिंधु को 21-13, 23-25, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा है।
0: बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर हम देखें तो महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स दोनों में एक ही जैसा हार रहा है, जहां एक लक्ष्य सेन का बाहर होना बड़ा झटका रहा, इधर सिंगल महिला सिंगल्स में सिंधु का बाहर होना हमारे लिए बड़ा झटका रहा, लेकिन दोनों ही जगहों पर इस गम को भुला दिया एक जगह के दाम भी श्रीकांत ने तो दूसरी तरह तन्वी शर्मा ने।
1: बिल्कुल, सिंधु को लेकर भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआती मैच में जो उनका प्रदर्शन था वो ठीक नहीं रहा और वो हार कर बाहर हो गई।
0: खैर, अब कल देखते हैं कि श्रीकांत और शर्मा, तन्वी शर्मा क्या रोमांचक मुकाबला दिखाती है हमें। तो चलिए, बैडमिंटन के इस लाइव रोमांस के बाद अब रुख करते हैं राष्ट्रीय गौरव हॉकी की तरफ, जहां हॉकी इंडिया ने पंजाब में होने वाले पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सिद्धार्थ, ये टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से पंजाब के जालंधर और मोहाली में खेला जा रहा है, तो आज घोषित हुई इस टीम की मुख्य बातें क्या लग रही हैं आपको?
1: जी हां जया, हॉकी प्रेमियों के लिए ये बेहद शानदार टीम चुनी गई है। हाल ही में भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे सरपंच साहब यानी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ही इस 18 सदस्यीय टीम की कप्तानी संभालेंगे। वहीं विवेक सागर प्रसाद को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अनुभवी गोलकीपर किशन बहादुर पाठक की टीम में शानदार वापसी हुई है, जो हमारी सुरक्षा दीवार को और मजबूत करेंगे। जया,
0: बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन जब भी किसी टीम की घोषणा होती है ना, तो हमेशा एक सवाल उभरता है कि क्या टीम में पुराने कोर खिलाड़ियों को बनाए रखा गया है या फिर कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। तो ऐसे में अपने श्रोताओं को बता दूं कि कोच क्रेग फुल्टन ने निरंतरता पर भरोसा जताया है, लेकिन युवा डिफेंडर अमदीप लाकड़ा और मिडफील्डर आदित्य लालगे को सीनियर टीम में खुद को साबित करने का एक और बेहतरीन मौका दिया गया है। भारत इस टूर्नामेंट में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन और 5 बार के विजेता के रूप में उतरेगा। भारत अपना पहला मैच 27 अक्टूबर को जालंधर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा।
1: बिल्कुल जय, और खास बात यह है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए पंजाब में 2 दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी हो रही है। इसके मुकाबले जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे। और पंजाब शुरू से हॉकी को लेकर आप देखते हैं कि किस तरीके से पंजाब में हॉकी का क्रेज रहा है, कितनी लोकप्रिय है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे हॉकी प्रेमियों के लिए। तो इसका सबको इंतजार रहेगा, और जिस तरह से हमारी टीम ने अभी एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया है, तो बहुत ज्यादा शायद इसीलिए टीम में परिवर्तन नहीं किया गया है, टीम पूरे फॉर्म में है जय।
0: बिल्कुल,
1: और अब रुक करते हैं आज की एक और बड़ी घोषणा का। 18 अक्टूबर से जापान के नागोया शहर में 5वें पैरा एशियन गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने आज भारतीय दल को मंजूरी दे दी है। जया
0: जी सिद्धार्थ, खेल मंत्रालय ने आज आधिकारिक तौर पर 166 एथलीटों के भारतीय दल को हरी झंडी दे दी है, जो 10 अलग अलग खेलों में भारत की चुनौती पेश करेंगे। और गर्व की बात यह है कि उद्घाटन समारोह में टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत और टेबल टेनिस में रजत पदक विजेता भावीना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे, जो परेड ऑफ नेशंस में तिरंगे को थामेंगे।
1: बिल्कुल जया, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल होते हैं जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, उसका प्रतिनिधित्व करते हो किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, तो ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा सपना होता है। और ऐसे में हम अपने जितने भी पैरा एथलीट्स हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही ये तो बात हो गई, और अब रुक कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे नेशनल शूटिंग ट्रायल्स के आज अंतिम दौर के मुकाबले समाप्त हो गए हैं, और रेंज से हमारे निशानेबाजों को लेकर भी ताजा अपडेट जया कुछ आई है।
0: बिल्कुल सिद्धार्थ, निशानेबाजी रेंज से आज भारत के शीर्ष शूटर्स ने अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया है। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा के अनीश भानवाला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रायल्स में पहला स्थान हासिल किया है। ओलंपिक स्टार मनु भाकर की स्पर्धा के भी परिणाम है। दरअसल महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा है और सर्वश्रेष्ठ

0: श्रेष्ठ स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन ट्रायल्स के परिणाम आगामी अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम का आधार तय करेंगे।
1: बिल्कुल जया, क्योंकि हमारे जो निशानेबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन अभी किया है हाल में, और हमेशा से वो पदक के बड़े दावेदार रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम अब रुख कर लेते हैं, एक बहुत अच्छी खबर आईसीसी से आ रही है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
2: शेफाली ने दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। 22 वर्षीय शेफाली को पहली बार पिछले साल नवंबर में ये सफलता मिली थी। उन्होंने घरेलू मैदान पर आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिला एशिया कप में भारत की जीत में शेफाली वर्मा ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईसीसी के अनुसार शुभमन गिल ने भारत के अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार जीता। गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत के पहले दो वनडे इंटरनेशनल मैचों में 33 रन बनाए, जिसमें पहले मैच में शतक और दूसरे में नाबाद दोहरा शतक शामिल था। जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में पुरस्कार जीतने के बाद ये गिल का पांचवा आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है, जिसे वे सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी के रूप में अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर चुके हैं। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ जया, जो आप आईसीसी जब प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हो तो पूरी दुनिया में इसकी गूंज होती है, और इनफैक्ट देश के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात होती है।
3: बिल्कुल, जहां एक तरफ शेफाली वर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है, वहीं पे शुभमन गिल भारतीय कप्तान को आईसीसी प्लेयर पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब जब क्रिकेट की बात हो रही है तो क्यों ना हम घरेलू क्रिकेट का भी रुख कर लें और क्रिकेट के महाकुंभ यानी रणजी ट्रॉफी की तरफ रुख करते हैं। सिद्धार्थ, मुंबई और उत्तर प्रदेश ने तो आज एक तरफा जीत दर्ज की है।
1: जी हाँ, और जिस तरह से मुंबई उत्तर प्रदेश ने आज प्रदर्शन किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने चंडीगढ़ को एक पारी और 155 रनों के विशाल अंतर से रौंदा। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम ने भी बिहार को एक पारी और 267 रनों के रिकॉर्ड अंतर से शिकस्त देकर पूरे अंक हासिल कर लिए हैं। दिल्ली और बंगाल के मैच में भी आज आकाशदीप का जलवा रहा, हालांकि यश ढुल जया चोट के कारण थोड़ा रिटायर्ड हर्ट हो गए, तो उनको थोड़ी सी निराशा हुई।
3: बिल्कुल, और जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये कुछ और भी जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ी देर में देंगे इसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ इस बेहतरीन और विस्तृत चर्चा के लिए। तो खेल प्रेमियों, आज डेनमार्क ओपन के उतार चढ़ाव, पुरुष हॉकी और पैरा एशियन गेम्स टीमों की घोषणा से लेकर रणजी ट्रॉफी के अंत तक खेल जगत की हर हलचल पर हमने आपसे बात की, और भले ही लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु की हार की निराशा हमारे हिस्से आई हो, लेकिन जैसा कि खेल की दुनिया में कहा जाता है कि जीत और हार तो दांव की बात है, असली खिलाड़ी वो है जो अंत तक हार ना माने।
1: क्या बात है जया, आपने तो बहुत ही मोटिवेट लाइन बोलिए, क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो जीत और हार का सिलसिला हमेशा बना रहता है, लेकिन हार कर जो जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं।
3: बिल्कुल, और हम अभी कह रहे थे ना कि क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, इस पर और भी कुछ जानकारी देंगे। तो बता दें कि इन आज के इन रोमांचक नतीजों के बाद अब वक्त हो चला है कल यानी 14 अक्टूबर के सुपर वेंसडे शेड्यूल पर बारीक नजर डालने का। जाने से पहले नोट करिए कल के जो मुख्य आकर्षण है। कल डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर के बड़े मुकाबले खेले आएंगे, जहां किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी।
1: बिल्कुल, इसके लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम पे लगातार आपको ट्यून इन करना होगा। और जया, इसके अलावा कल का सबसे बड़ा आकर्षण तो हैदराबाद के मैदान पर होने वाला भारत वेस्ट इंडीज का चौथा T20 मुकाबला है।
3: बिल्कुल सिद्धार्थ, और अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रही थी। कल शाम 7 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की इस रोमांचक श्रृंखला में यह मैच बेहद निर्णायक मोड़ पर है। हैदराबाद की यह पिच हमेशा ही रनों की बरसात के लिए जानी जाती है, और ऐसे में हमारे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान की कप्तानी में भारतीय युवा ब्रिगेड वेस्ट इंडीज के कैरिबियाई पावर हिटर्स के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा करने या बड़े लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से उतरेगी। संजू सैमसन और कुलदीप

0: यादव की जो फिरकी पर भी हम सभी फैंस की निगाहें टिकी होंगी।
1: बिल्कुल जया, हैदराबाद का जो मैदान है वो बल्लेबाजी के लिए शानदार है। भारत ने इस मैदान पर आखिरी टी20 मैच 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जहां भारत ने 279 रन बनाए थे। ऐसे में शिवम दुबे को प्रिंस यादव की जगह शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और हिट कोच गौतम गंभीर की निगाहें इस समय प्लेइंग 11 पर होंगी, क्योंकि जहां वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रृंखला जो है वो इसी मैच से डिसाइड होने वाली है।
0: बिल्कुल, और कल दिल्ली के मैदान पर फुटबॉल का भी तो एक बड़ा मुकाबला होना है ना।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जाए। घरेलू स्तर पर फुटबॉल प्रेमियों के लिए कल इंडियन सुपर लीग यानी ISL में एक बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल शाम 7 बजे पंजाब FC का सामना ओडिशा FC से होगा। दोनों ही टीमें इस समय अंक तालिका में शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि कल शाम 7 बजे एक तरफ क्रिकेट का बल्ला गरजेगा तो दूसरी तरफ फुटबॉल की किक होगी और बैडमिंटन के स्मैश तो देखने को मिलेंगे ही। हालांकि आज कुछ निराश करने वाली खबरें हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल कुछ सकारात्मक खबर जरूर आए। तो खेल का रोमांच कल चरम पर होने वाला है। श्रोताओं, अपने खिलाड़ियों का हौसला बनाते रहिए, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जब आप और हम मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी तो हमारा भारत जीतेगा
1: और हम बनेंगे विश्व चैंपियन।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल ID sportsscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
3: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
2: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर

0: उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: स्ट्रेंथन द पार्टी।
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।

0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
1: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है

0: निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 पर बंद हुआ।
2: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73034
3: पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना है सुहाना सफर। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में परदेसी फिल्म का ये गाना है, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम मस्ताना।
1: जब जब हम तुमको देखे हैं छेला मन मोर।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जीवन मृत्यु इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, जवां मोहब्बत, ये फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: तेरी मेरी। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार पर।
1: मैं बन का पंछी बन के तन तन बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के तन तन बोलू रे,
2: मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे।
0: अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के 4 बच्चे थे, इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन।

0: देवी अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए।
1: बाजू।

0: अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई जो हिमांशु राय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नकर करते रहे, पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई।
1: रेल गाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक।

0: लाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मतलब पट्टम उंगोल नदी गोल नदी गोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव मंदाबाद मंदाबाद मंदाबाद मंदाबाद सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक
1: जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे।

बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आई। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए, उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी।

अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आजाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा।

0: 1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी।
1: धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा।

0: खातर तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल, तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर।
1: सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थी 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि।

दोस्तों, अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था।

0: दोस्तों, अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना।
1: बेकरार दिल तू गाए जा,

0: दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीप में।
1: होटो में

काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उमर दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्म गुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीजा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह।

0: हम सच चलाते सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज में लत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।
1: 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ऑपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपियरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो, इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनुप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि बीआर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान। और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलन हो गया।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं।

0: भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
4: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह माही चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, पेश नजर है फिल्म संगीत।

पहाड़ों की हवा लगती है, वो जब पास आती है, उसके बिना कैसा जीना, उससे ही मेरी सांस आती है। इसी के साथ फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को शबाना शेख का प्यार भरा नमस्कार। आगाज करते हैं मेरे हमदर्द मेरे दोस्त फिल्म नगमे के साथ, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, बोल मजरूर सुल्तानपुरी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। तेरे बिना कोई हमें हमारा नहीं लगता, इस इश्क के दरिया का कोई किनारा नहीं लगता। तेरे होकर तो मरना भी कबूल था, तुझसे बिछड़कर तो जीना गवारा नहीं लगता।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं साहिर का लिखा गीत रवि के संगीत निर्देशन में अमानत फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की है। मेरी हर खुशी का सबब हो तुम, मेरे दिल के सबसे करीब हो तुम।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में अमानत फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आंसू फिल्म का नगमा। इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तेरी मुस्कान से रोशन है मेरी जिंदगी, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी बंदगी।

आपने मोहम्मद रफी की आवाज में चिराग फिल्म का गीत सुना, हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। अख्तर रहमानी के बोल की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। तेरे साथ चलना मेरी आदत बन गई, तेरी मोहब्बत मेरी इबादत बन गई।

हसीना मान जाएगी स्वयं का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं वक्त फिल्म का ये दो गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। बोल साहिब लुधियानवी के हैं और धुन रवि की है। यह हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी जान जाओगे दो चार मुलाकातों में।

अभी आपने आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में वक्त फिल्म का गीत सुना आमने सामने। अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है साहिर और मौसिकी कल्याण जी आनंद जी की है। एक वक्त है तन्हा गुजारा सनम, अब वक्त भी है हमारा सनम, तुम दरिया और मैं किनारा बन जाऊं, दुनिया अब नहीं है गवारा सनम।

आमने सामने सुन लगी, तभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं मेरे हम सफर फिल्म का दो गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। तुझे पाकर जिंदगी हसीन लगती है, तेरे साथ हर राह रंगीन लगती है।

मेरे हम सफर सुनकर गीत भी आपने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं साहिर का लिखा गीत चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में वासना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। हर सांस में तेरा एहसास छुपा है, मेरे दिल में सिर्फ तेरा ही प्यार।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में वासना फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आपकी कसम फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन आर डी बर्मन की है। दिल की धड़कन में तेरा ही जिक्र होता है, मेरे हर ख्वाब में तेरा ही चेहरा होता है।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में थमराम फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है। क्या क्या तेरे नाम लिखूं, दिल लिखूं या जान लिखूं, आंसू चुरा के तेरी प्यारी।

आप सुनते हैं आशा भोसले मनहर की आवाज में होटल फलका की बोल इंदिवर के हैं धुन उषा खन्ना की है। जाने क्यों तुमसे इतना प्यार है, जान तुम पे जान निसार है, कैसे कहूं कि तुम क्या हो मेरे, तुमसे मेरी दुनिया मेरा संसार है।

अभी आपने आशा भोसले और मनहर की आवाज में होटल फिल्म का गीत सुना। खुदा करे तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, दुआ ही मेरी तेरे गमों से दूरी हो जाए। इश्क तुझे इस कदर हो मुझसे, मेरी याद तेरी।

जरूरी हो जाए। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। शबाना शेख को अब फिल्म संगीत समाप्त करने की इजाजत दे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।

0: विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का नया चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।